सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
9: श्रोतागण, ई प्रातः कालीन बेला में स्वागत बा रउआ सबके प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। तो दोस्त लोग, रउआ त जानत ही बानी कि ई प्रोग्राम लेके आवेली राउ रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले रउआ सबके सुप्रभात प्रणाम। दोस्त लोग, हर बार की तरह ई बार भी हमरा पास पर रोज स्वास्थ्य की संवारे खातिर बहुत सारा हेल्थ टिप्स। तो चलिए शुभ आरंभ कर जाओ आज के कार्यक्रम के। दोस्त लोग, आज जानल जाए सबसे पहले चना के शक्तिशाली गुण के बारे में। नाश्ता खातिर एक मुट्ठी काला देशी चना पानी में डाल के रख दी। सुबह एक एक कच्चा या उबाल के या तवा पर थोड़ा भून के मसाला मिला के खूब चबा चबा के खाएं। चना के साथ किशमिश खा सकता नहीं और ये कोनो मौसमी फल भी खा सकता नहीं। केला के पानी से धो के छिलका सहित गोलकार टुकड़ा में काट ली और ये छिलका सहित चबा चबा के खाएं। नाश्ता में अन्य कोनो चीज ना ली। भोजन में भी रवा चना के इस्तेमाल कर सकता नहीं, जैसे रोटी के आटा में चोकर मिलल होखल होके और इस सब्जी या दाल में चना के चुनी यानी चना के छिलका मिलल होखल होके तो ये आहार बहुत ही सुपाच्य और पौष्टिक हो जाला। चोकर और ये चना में सब प्रकार के पोषक तत्व होला, चना गैस ना करेला। विषाक्त वायु होके त अपान वायु के रूप में बाहर निकाल देला। ऐसे पेट साफ और हल्का रही, पाचन शक्ति प्रबल बनल रही, खाल पियल अंग लागी, जैसे शरीर चुस्त दुरुस्त और शक्तिशाली बनल रही। मोटापा, कमजोरी, गैस, मधुमेह, हृदय रोग, बवासीर, भकंदर आदि रोग ना हुई। चना के आटा के उपटन शरीर पर लगा के स्नान करे से खुजली रोग नष्ट होला और त्वचा उजला होला। यदि पूरा परिवार चना के नियम पूर्वक सेवन करे तो घोड़ा की तरह शक्तिशाली, फुर्तीला, सुंदर और परिश्रमी बनल रह सकेला। गेहूं, चना और जौ तीनों समान वजन में जैसे तीनों दो दो किलो लेके मिला ली और मोटा पिसवा के चाले बिना यानी चोकर सहित आटा की रोटी खाइल शुरू कर दी। एके बेजड़ या मिक्सी रोटी कहल जाला। चना के गरीब के भोजन भी कहल जाला, लेकिन एके ताकत के हमनी के अनदेखा कर देनी सर। सस्ता भी है और सरल सुलभ भी। ऐसे हमने के पथ्य यानी सेवन करे योग्य आहार के रूप में चना के सेवन करके स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्राप्त करे के चाहिए। तो दोस्त लोग ई तरह है चना के घरेलू नुस्खा। चलिए अब जान ली है जाओ रंगीन आहार सेहत के आधार एकरा बारे में। वैज्ञानिक लोग ई पौले बा कि अलग अलग रंग के खाद्य पदार्थ रउआ शरीर के अलग अलग हिस्सा के फायदा पहुंचावेला। तो चलिए जानल जाओ कि कौन सा रंग शरीर के कौन अंग के मित्र है। सफेद यानी आलू, लहसुन, सफेद मशरूम आदि रउआ फेफड़ा खातिर फायदेमंद होला। नारंगी रंग लीहा के सलामती खातिर नारंगी रंग के चीज खाइल फायदेमंद होला। संतरा में विटामिन सी तो होला ही, कुछ मात्रा में विटामिन ए भी होला जौन प्लीहा खातिर अच्छा होला। हरा फल सब्जी में लूटीन व इंडोल नामक फाइटोकेमिकल्स होला जौन लीवर की रक्षा करेला, अतः हरा रंग की चीज खूब खाएं। जामुनी, यदि रउआ अपना मस्तिष्क की सलामती चाहतनी तो जामुनी फल सब्जी के अपना आहार में शामिल करें। इमे हा अंगूर, प्याज, जामुनी रंग के पत्ता गोभी, बैगन आदि शामिल करें। दोस्त लोग यूँ काला रंग लोग के कम ही पसंद होला, खास तौर पर खाए पिए के मसाला में, लेकिन यकीन मानी काला रंग की आहार रउआ गुर्दा खातिर बहुत लाभकारी हुई। अतः मुनाका, काली चौला फली, काला जैतून आदि खाई करी। लाल, यदि रउआ दिल के रक्षा करे के चाहतनी तो लाल रंग के चीज खाई। लाल रंग के फल सब्जी में फाइटोकेमिकल्स पावल जाला, तरबूज, अमरूद, टमाटर आदि ई श्रेणी में आवेला। एस्ट्रॉबेरी, रसबेरी और बीटरूट में एंथोसाइनिन पावल जाला। फाइटोकेमिकल्स के ही एगो समूह है जौन उच्च रक्तचाप के नियंत्रित करेला और डायबिटीज से जुड़ल समस्या से बचाव करेला। तो दोस्तों अब हम बताएं दूध से निखरत कोमल सौंदर्य के घरेलू नुस्खा। दूध के गुलाब जल में मिला के लगावे से त्वचा की रंगत निखरेला। दूध में थोड़ा सा नमक मिला के चेहरा पर सुबह शाम लगावे से मुहासा दूर होला। बादाम, बेसन, गाजर के रस दूध में मिला के उबटन की तरह लगावे से त्वचा में कमनीयता आवेला। दूध के पूरा शरीर पर लगा के रगड़े से त्वचा में चमक आवेला। नाखून के सुंदर बनावे खातिर कुछ देर दूध में भिंगा के रखी। बर्तन साफ करे से हाथ खुरदुरा हो जाला। ते ए पर दूध में नींबू के रस मिला के लगावे से राउर हाथ सुंदर हुई। होठ के कलापन दूर करे खातिर दूध के होठ पर प्रतिदिन लगाई। आधा चम्मच काला तिल और आधा चम्मच सरसों के बारीक पीस के दूध में मिला के मुहासा पर निरंतर लगावे से फायदा होला। चिरौंजी के दूध के साथ पीस के लगावे से त्वचा चमकदार बनेला। तो दोस्त लोग, आप जानल जाइए जब पेट में दर्द होके तक का करे के चाहिए। पेट के ऊपरी भाग में दर्द की स्थिति में 3 बूंद पिपरमेंट ऑयल, 2 बूंद क्लोव ऑयल, 1 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल के मिश्रण में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल मिला के मालिश करे से लाभ होला। दर्द यदि पेट के निचला हिस्सा में होके तो 2 बूंद जिरेनियम ऑयल, 2 बूंद रोजमेरी ऑयल। वह 1 बूंद जिंजर ऑयल में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल के दर्द वाला भाग पर हल्का हाथ से मालिश कर जा सकेला, तो ऐसे दर्द में राहत मिली। तो दोस्त लोग, ई रहला आज के घरेलू नुस्खा, जी में हमनी के जननी हसन चना के घरेलू नुस्खा और ई रंगीन आहार के बारे में, ओकरा साथे साथे दूध से निकलल कोमल सौंदर्य के बारे में। तो अब वो वक्त आ गई बा जी में दीपाली ली है रउआ से जाए के इजाजत। तो रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल, रही खुशहाल। नमस्कार।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
14: कॉल करे 87-894-18744।
15: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा।
17: मिल जाए नयन किसी से और रिएक्शन हो जाए, नहीं तो जगा हुआ आशिक यहीं सो जाए, नहीं तो जगा हुआ आशिक यहीं सो जाए। थैंक यू।
18: हेलो सर, वेलकम टू आवर कैफे, आप क्या लेना पसंद करेंगे?
19: एक चाय मिलेगी?
18: जी सर, एक चाय। और कुछ?
15: नहीं नहीं, ये बताइए ये सब हो क्या रहा है, किस बात का सेलिब्रेशन चल रहा है?
18: सेलिब्रेशन नहीं सर, ये एक ओपन माइक सेशन है, एवरी वीक होता है यहाँ।
15: अरे वाह, क्या होता है इसमें?
18: इसमें शहर के सारे बडिंग आर्टिस्ट आते हैं और अपना टैलेंट शोकेस करते हैं। कोई गाना गाता है, कोई पोएट्री सुनाता है, स्टोरी टेलिंग भी होती है।
15: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है।
18: जी सर, मैडम ने स्टार्ट किया था।
15: अच्छा, कहाँ है मैडम, उनसे मिल सकता हूँ?
18: सर, मैडम तो पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में चल बसी।
15: ओह, आई एम सो सॉरी। तो अब कैफे कौन संभालता है?
18: सर देखते हैं, मतलब अब क्या ही देखते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आपको पता है पहले जब मैडम थी ना कैफे में, तब ये कैफे की रौनक ही अलग थी। सर और मैडम भी पार्टिसिपेट करते थे, होस्ट करते थे, भीड़ लगी रहती थी हर समय, कस्टमर्स ना बिल्कुल फैमिली जैसे थे।
15: अच्छा,
18: पर जब से मैडम गई है सर को हंसते हुए देखा ही नहीं है। वो क्या है ना, मैडम से बहुत ज्यादा अटैच थे वो, अब वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे लाइफ में।
15: मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
18: वो देखिए, वो बैठा है ना, वही है, आप मिल लीजिएगा, पर आप उनसे ये मत कहना कि मैंने आपको ये सब बताया, मेरी नौकरी जाएगी वरना। सॉरी, आपकी एक चाय है ना, अभी लाया।
19: So guys and girls, इसी के साथ I would like to invite our next speaker. आइए, अपना नाम और इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना पीस प्रेजेंट कीजिए।
15: हेलो, चेक। हाय, मेरा नाम नील है। मैं एक ट्रैवलर हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, और हाँ, शिव को ढूंढ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं कुछ कुछ उन जैसा ही हूँ, जंगल में तो नहीं रहता पर शहरों से दूर रहना पसंद करता हूँ। नंदी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी बाइक नंदू पर सवारी करता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है क्योंकि ये सारी दुनिया ही मेरा घर है, और इस दुनिया के लोगों में मैं शिव को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि शिव तो सब में बसते हैं, और तभी तो कहते हैं हर हर महादेव। तो आज मैं आप सबको शिव की एक कहानी सुनाने आया हूँ। ये कहानी कुछ लोगों ने सुनी होगी, पर मैं इसे दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस कहानी की हर किसी को थोड़ी थोड़ी जरूरत है। तो बात है उस समय की, जब शिव और पार्वती की शादी को कुछ ही समय हुआ था। पार्वती जी शिव के ख्यालों में कैलाश पर विश्राम फरमा रही थी।
20: पार्वती, कितनी सुंदर आवाज है तुम्हारी।
21: अरे प्रभु, आप कब आए, मुझे पता ही नहीं चला।
20: हाँ, तुम किसी के विचारों में तल्लीन थी।
21: हे ईश्वर, मेरे जीवन में आपके सिवाय और है ही कौन, बस आप ही के बारे में तो सोच रही थी।
20: मेरे बारे में क्या सोच रही थी तुम प्रिय?
21: यही कि हमारे विवाह संपन्न हुए अधिक समय नहीं हुआ, किंतु भावनात्मक रूप से मैं आपसे अत्याधिक तौर पर जुड़ गई हूँ।
20: मैं समझा नहीं प्रिय।
21: मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा जीवन आप ही से है और आप ही मेरा जीवन है।
20: अच्छा, किंतु ऐसा क्यों?
21: ये तो आप ही की माया है प्रभु। मैं इतने कम समय में आपसे इतनी आसक्त हो गई हूँ कि कभी कभी सोचती हूँ तो विचलित हो जाती हूँ कि यदि आप ना हुए मेरे साथ तो मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा प्रभु।
20: अधिक आसक्ति भी सही नहीं है प्रिय।
21: क्यों प्रभु, आसक्ति है भी तो आप ही से है ना।
20: मुझसे या किसी और से, चाहे किसी वस्तु से, आसक्ति आशक्ति का कारण बन जाती है।
21: किंतु
20: परंतु कुछ नहीं। आओ, आज तुम्हें एक बात बताता हूँ।
21: बताइए।
20: आसक्ति मनुष्य को दुर्बल बनाती है प्रिय।
21: दुर्बल? आपके कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को भावुक नहीं होना चाहिए?
20: नहीं प्रिय, भावुकता ठीक है, किंतु अत्यंत भावुक होना सही नहीं।
21: किंतु इस पर हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं महादेव?
20: वैराग्य से।
21: वैराग्य? इसका क्या अर्थ हुआ प्रभु?
20: वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि हम भावनाहीन हो जाएं, किंतु हर छोटी वस्तु के प्रति भावुक होने से, स्वयं को नियंत्रित कर लेने से जीवन सुगम हो जाता है। सच पार्वती। और फिर मनुष्य जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ती है। दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, कोई अपने प्रिय को खो देता है, तो कोई असफलता के चलते शोक में डूबता है। तब ये ही वैराग्य उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकालने में सहायता करता है।
21: प्रभु, जीवन में असफलता और पराजय आवश्यक है क्या प्रभु?
20: असफलता और पराजय वास्तविकता है। हम चाहकर भी उन्हें घटने से रोक नहीं सकते, किंतु जीवन गति नहीं रुकती। जो ये समझ जाते हैं वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो बहुत दुख पाते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, संतुलन आवश्यक है। संतुलित रूप से वैराग्य आवश्यक है। मैं भी वैराग्य का पालन करता हूं पार्वती। तुम समझ भी रही हो कि मैं क्या कह रहा हूं?
21: परंतु आसक्ति से कैसे उभर सकते हैं प्रभु?
20: आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराए का भेद मिटाना आवश्यक है, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं अपने भीतर करें।
21: प्रभु, किंतु आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपको इसकी क्या आवश्यकता?
20: मुझे भी वैराग्य का महत्व समझने में समय लगा। वैराग्य सबके लिए आवश्यक है पार्वती। मुझ जैसे जंगल में रहने वाले अघौड़ के लिए भी, और ग्रह ग्रस्ती वाले मनुष्यों के लिए भी उतना ही आवश्यक है प्रिय। तुम जानती हो, पिछले जीवन में जब तुम देवी सती के रूप में मेरे जीवन में आए, मैंने तुमसे अत्यधिक प्रेम किया, किंतु जब तुम अग्नि में प्रवेश कर अपने देह को छोड़कर चली गई थी, तो मैं स्वयं को संभाल नहीं पाया। मैंने तांडव किया और स्वयं पर नियंत्रण ही खो दिया। तब मुझे देवों ने एहसास कराया कि मुझे भी वैराग्य का पालन कर सृष्टि को आगे बढ़ाना है, और तभी तुम मेरे जीवन में लौट आई। यदि मैं स्वयं को उस समय नहीं संभालता तो तुमसे नहीं मिल पाता।
15: थैंक यू
2: नील, यू आर अमेजिंग। शिव की कहानी सुना रहे थे या खुद की? डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए।
6: यू आर टोटली फीलिंग इट ब्रदर।
18: जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तुम खुद भी वैराग्य प्रमोट कर रहे हो ब्रदर?
15: 100%। मुझे लगता है सभी को ये करना चाहिए।
22: गुड पीस नील।
15: हेलो सर, आप यहाँ के ओनर है ना?
22: यस।
15: क्या आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे?
22: मैं जानना चाहता हूँ नील कि तुमने ये कहानी आज क्यों सुनाई?
15: सर, मुझे लगा शायद आपको या किसी और को इसकी जरूरत है। अब वक्त आ गया है।
22: तुम कहना क्या चाहते हो एग्जैक्टली?
15: यही कि अब वक्त आ गया है कि आपको लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए।
22: एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू?
15: देखिए सर, बुरा मत मानिए, आपके कस्टमर्स आपकी फैमिली हुआ करते थे। यहाँ हैपनिंग माहौल हुआ करता था, आपका स्टाफ खुश रहा करता था।
22: मैं कैसे भूल सकता हूँ अपनी वाइफ को? I am a human after all।
15: यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अटैचमेंट और डिटैचमेंट का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अटैचमेंट जानते हैं, समझते हैं, पर डिटैचमेंट हमें कोई नहीं सिखाता।
22: हाँ, तो नहीं आता है मुझे, मुझसे नहीं होगा ये, भगवान नहीं हो सकता हूँ मैं।
15: हर हर महादेव, हम सब में शिव है, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं।
22: अरे कैसी बातें कर रहे हो नील।
15: देखिए सर, डिटैचमेंट आपको सीखना होगा, लाइफ में आगे सबको बढ़ना होगा। फेलियर्स और लॉसेस लाइफ की रियलिटी है, उनसे हम भाग नहीं सकते, लेकिन उनसे डील करना सीख सकते हैं डिटैचमेंट सीखकर, वरना हम खुद को भूल जाएंगे।
18: हाँ सर, जैसे आप अभी खुद को भूल गए हैं। याद है पहले आप कैसे हर दिन नाचा गाया करते थे हम सबके साथ? अब तो आप हमें भूल ही गए हैं सर।
22: हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दुख से बाहर निकलकर जिंदगी फिर से जीना शुरू करूं।
18: ये हुई ना बात सर।
15: चलो अच्छा है, मुझे अब चलना चाहिए।
22: अरे क्या हुआ, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी मेरी कहानी तो सुनो।
15: मुझे आगे का रास्ता तय करना है, अमरनाथ जाना है, भोलेनाथ के धाम।
22: अमरनाथ? अरे वाह।
15: अरे आप भी आइए ना, वहाँ साथ बैठकर आपकी कहानियाँ भी सुन लेंगे।
22: हाँ हाँ क्यों नहीं, तो फिर वहीं मुलाकात होगी।
15: बिल्कुल, हर हर महादेव।
22: हर हर महादेव।
16: जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। एक बात सीरियसली बता बिड़ू, जब भी इस दुनिया से तेरा कोई अपना गया, तू साथ गया क्या? नहीं ना। जाने के बाद तू क्या करता है? घर पे उसका फोटो लगाता है, फोटो पर माला चढ़ाता है, आते जाते पैर पड़ता है, उसको देख के कभी कभी रोता है, और कभी कभी ज्यादा इमोशनल हो गया तो फोटो से बात करने लगता है, लेकिन साथ तो नहीं जाता है ना। तो वो अपनों के साथ ना जाना ही डिटैचमेंट है, वही वैराग्य है। देख बड़ो, असली बात तो यह है कि हर किसी का अपना लाइफ में अलग शो चल रहा है, एंड द शो मस्ट गो ऑन। तो बड़ो जिंदगी में आगे बढ़ते रहने का, लाइफ का शो हिट करने का, शिव वैराग्य का असली मतलब समझाते हैं। शिव जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
23: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
23: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
23: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
23: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
24: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
25: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
24: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
25: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
24: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
26: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
27: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
26: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
27: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
26: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
27: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 888 6973।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ। कॉल

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रुपए

0: डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने मध्य निषेध मामलों को लेकर की समीक्षा। महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या में एक आरोपी गिरफ्तार। आपदा से पहले तैयारी और सुरक्षा को लेकर बच्चों को दी गई जानकारी। सेफ्टी टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत से मचा हाहाकार। कुचायकोट में चाकू मारकर एक अधेड़ की हत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने कई मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शराबबंदी और मध्य निषेध से संबंधित मामलों की समीक्षा कर जिले के सभी थानों के थानाध्यक्ष को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ते हुए आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में शराबबंदी के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी दें, साथ ही थाना स्तर पर लंबित शराब से संबंधित कांडों, जब्त शराब के विनिष्टीकरण और शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहनों के राजसात की कार्रवाई के संदर्भ में भी उन्होंने विस्तृत समीक्षा की और स्पष्ट कहा कि मध्य निषेध सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए शराब के अवैध कारोबार, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, साथ ही किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरतें। समीक्षा के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2016 से 26 अगस्त 2026 तक जिले के विभिन्न थानों में शराब से संबंधित लंबित मामलों में कुल 2,76,293,070 लीटर शराब का विवरण दर्ज है। इसमें स्प्रिट, चुलाई शराब, देशी शराब और विदेशी शराब की मात्रा शामिल है। साथ ही 256 वाहनों से संबंधित मामले भी लंबित दर्शाए गए हैं, जिनमें अधिग्रहण की कार्रवाई की जानी है। जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि न्यायालय एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लंबित शराब मामलों के निष्पादन में तेजी लाए, जब्त शराब के विनिष्टीकरण और वाहनों के राजसात की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करें। गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गोपालपुर के ग्राम शाहपुर पकड़ियार में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस मामले में पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करते हुए मृतिका के पोस्टमार्टम के लिए शव को गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने महिला के परिजनों के आरोप पर उसके पति को गिरफ्तार किया है। महिला के मायके वालों ने कहा कि परिवार के लोग लगातार गाली गलौज और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। न्यायालय के आदेश के पश्चात भी मृतिका को अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी। आरोप है कि इस दौरान ससुराल पक्ष द्वारा पुनः दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था। इसी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के नामजद आरोपी सुग्रीव शाह पिता स्वर्गीय परमा साकिन शाहपुर पकड़ियार थाना गोपालपुर को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा आपदा से पूर्व तैयारी, जन जागरूकता तथा सुरक्षित समुदाय के निर्माण की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों के तहत आज सिधवलिया प्रखंड के UHC डुमरिया ईस्ट में NDRF की 9T टीम एफ कॉपी के द्वारा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान सुरक्षित रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की, विशेष रूप से प्राथमिक उपचार, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, रक्त स्त्राव को नियंत्रित करने, सर्पदंश के स्थिति में आवश्यक सावधानियां बरतने, आंधी तूफान एवं वज्रपात से बचाव तथा बाढ़ के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षित बचाव तकनीकों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि आपदा की स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहकर उपलब्ध संसाधनों का सुरक्षित उपयोग और त्वरित निर्णय किस प्रकार जीवन रक्षक साबित हो सकता है, भूकंप, बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के साथ साथ क्या करें और क्या ना करें, इस संबंध में भी बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई। आज गोपालपुर थाना क्षेत्र के सवनही पट्टी गांव में एक भीषण हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यहां एक सेफ्टी टैंक में सेटरिंग खोलने के दौरान 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि सेटरिंग खोलने के दौरान एक मजदूर सेफ्टी टैंक के अंदर फंस गया। उसे बचाने के प्रयास में एक एक कर 3 और मजदूर अंदर चले गए और दम घुटने से 4 की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। सेफ्टी टैंक से शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल में भेजा गया। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम और हाहाकार मच गया। मृतकों की पहचान बंटी बैठा उर्फ राकेश, जावेद आलम उर्फ टीपू, उमेश यादव और शब्बे आलम के रूप में हुई है। घटना के बाद प्रशासन मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने SDO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है जो इस पूरे कांड का बारीकी से जांच करेगी। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि बंद टैंक में उतरना क्यों खतरनाक है, इसके बारे में जो जानकारी दी जाती है वह सेप्टिक टैंक, सीवर और दूसरे बंद स्थानों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जहरीली गैस जमा हो जाती है। ऐसे स्थानों में किसी व्यक्ति के बेहोश होने पर उसे बचाने के लिए बिना सुरक्षा उपकरण अंदर जाना दूसरे लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए ऐसे स्थानों पर बिना सुरक्षा उपकरण के अंदर नहीं जाना चाहिए। आज कुचायकोट में भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुचायकोट गांव में ही आज सुबह सो रहे एक अधेड़ किसान नरेश बैठा का मोबाइल छीनकर अपराधी भागने लगा, जिसके बाद किसान ने उसका पीछा कर उसका विरोध करना शुरू किया तो अपराधी ने उसे चाकू गोद दिया। पेट में चाकू मारकर अपराधी फरार हो गए। इस दौरान परिवार के लोगों ने अधेड़ को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर किया गया और रास्ते में किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक कुचायकोट गाँव के ही 55 नरेश बैठा बताए जा रहे हैं। नरेश बैठा को शनिवार की सुबह करीब 2:30 जब वे अपने घर के बाहर सो रहे थे, इसी दौरान कुछ बदमाश पहुंचे और उनका मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगे। उन्होंने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गए, गिर गए, बदमाश फरार हो गए। पुलिस अब बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र के द्वारा बैठक की गई। विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस उप महानिरीक्षक गोपालगंज आए थे, जिसमें पुलिस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उन्होंने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में समीक्षा बैठक करते हुए कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, अभिलेखों के समुचित संधारण और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने तथा विधि व्यवस्था संधारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, पंचायत सरकार भवन, महादलित सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र भवन तथा कब्रिस्तान घेराबंदी सहित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर भी विस्तार पूर्वक मंथन किया गया। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन योजनाओं की स्थिति पर ध्यान दिया जिनका निर्माण कार्य विभिन्न कारणों से धीमी गति से चल रहा है या लंबित है। प्रतिवेदन में कई योजनाओं में आवंटन की कमी, भूमि विवाद, अतिक्रमण, सीमांकन तथा स्थानीय ग्रामीणों के विरोध और न्यायालय में लंबित मामलों को लेकर भी आवश्यक निरीक्षण करते हुए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। भूमि अतिक्रमण, आवंटन अथवा अन्य प्रशासनिक समस्या के कारण लंबित कार्यों का भी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ समाधान करें और योजनाओं को निर्धारित प्रक्रिया तथा समय सीमा के अंदर शीघ्र पूरा करें। इस दौरान उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। आज जदयू पार्टी ने व्यवसायिक प्रकोष्ठ को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसकी अध्यक्षता प्रमोद पटेल जिला अध्यक्ष ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश जदयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विधायक विशाल कुमार का जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए संगठन को और मजबूत करने के लिए हो रहे प्रयास और आने वाले समय में करने वाले प्रयासों पर भी विधिवत बैठक कर आवश्यक निर्णय लिए गए। वाराणसी रेलखंड पर हो रही नॉन इंटरलॉकिंग और प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर थावे रेलखंड पर कई गाड़ियों को निरस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 सितंबर को रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण करने के बाद गाड़ियों का निरस्तीकरण और मार्ग परिवर्तन इत्यादि किया गया है। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने वाली गोरखपुर कैंट सिवान सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी। सिवान और थावे से 31 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने 55037 और 55038 सिवान थावे सिवान सवारी गाड़ी को भी निरस्त किया गया है। वहीं 31 से 4 सितंबर तक चलने वाली 55035 सिवान गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी को भी निरस्त किया गया है। वहीं थावे से 3 सितंबर को चलने वाली 75105 थावे नकहा जंगल डेमू गाड़ी को भी निरस्त किया गया। खातीपुरा से 1 एवं 2 सितंबर को चलने वाली 19725 खातीपुरा दरभंगा एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग बाराबंकी अयोध्या कैंट शाहगंज मऊ भटनी सिवान थावे कप्तानगंज के रास्ते चलाया जाएगा। गाड़ी का ठहराव गोंडा गोरखपुर स्टेशनों पर नहीं रहेगा। थावे से 30 और 31 अगस्त तथा 2 सितंबर को चलने वाली 75105 थावे नकहा जंगल डेमू गाड़ी भी थावे से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी। गोरखपुर से 3 सितंबर को चलने वाली 75106 गोरखपुर थावे डेमू गाड़ी भी गोरखपुर से 180 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी। महावीरी अखाड़ा में झंडा के दौरान भी विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि लाठी लगने के बाद दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार दिया। यह युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। आनंद फानन में इसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के हरकुआ ढाला के पास शुक्रवार की देर रात का बताया जा रहा है। इसमें घायल युवक थावे थाना क्षेत्र के मिरलीपुर निवासी परमेश्वर बैठा का 19 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज शहर में गुरुवार की देर रात जुलूस के दौरान हुई एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में एक आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में नगर थाना की पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार हत्याकांड के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस मामले में एक SIT का गठन किया गया था। SIT की टीम ने लगातार अनुसंधान करते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुक्त गोलू उर्फ राजकुमार, पिता स्वर्गीय कृष्णा राम साकिन श्याम सिनेमा रोड थाना नगर जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने पूरे घटना के संदर्भ में जानकारी दी और अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। अभियुक्त ने बताया कि महावीरी अखाड़ा मेला के दौरान मोटरसाइकिल तेज गति से चलाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पकड़ा गया आरोपी फोन कर रोहित राम उर्फ लवकुश एवं अन्य लोगों को वहां बुलाया। इसी दौरान रोहित राम उर्फ लवकुश के द्वारा मृतक के दाहिने गाल में गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके शरीर से गोली के आगे का हिस्सा भी बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद और इसमें फरार चल रहे रोहित राम उर्फ लवकुश को भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी कार्रवाई जारी है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने मध्य निषेध मामलों को लेकर की समीक्षा। महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या में एक आरोपी गिरफ्तार। आपदा से पहले तैयारी और सुरक्षा को लेकर बच्चों को दी गई जानकारी। सेफ्टी टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत से मचा हाहाकार। कुचायकोट में चाकू मारकर एक अधेड़ की हत्या। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को 2 गुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्र स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
6: Every nation has a mission.
7: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
6: So diversity has to be celebrated.
4: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
8: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
4: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
9: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुआकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों

0: जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भूटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई। 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: जय हिंद सर।
9: एट ईज। हाँ, मीट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: म्यूजिक बंद हो गया, बस चलो पीछे चलो।
7: तुम अच्छे लड़के हो अबीर, मैं भी अच्छा हूं, पर तुम शुरू से अच्छे होगे, मैं नया नया बना हूं। ये साथ थी तो याद रहता था कि अच्छा हूं, वरना भूल जाता हूं।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमर।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052 1112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

इधर गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए उप मुख्यमंत्री सह सारण जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जिले में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री यादव ने बताया कि तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है, संवेदनशील स्थानों का नियमित निरीक्षण हो रहा है। जिले के मकेर, पानापुर, दरियापुर, अमनौर, परसा और सोनपुर के नदी किनारे क्षेत्रों में बसने वालों को सतर्क किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं पटना के दीघा घाट में गंगा नदी का जलस्तर घटा है, जबकि पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। दूसरी तरफ संभावित बाढ़ को देखते हुए बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड बुडको ने भी पूरी तैयारी कर ली है। विभाग के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने बताया कि पुनपुन नदी के पास खानपुर और बरमुत्ता में दो अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। निदेशक ने बताया कि इन स्थानों पर 16 पंप लगाए गए हैं, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने संभावित बाढ़ और कटाव से निपटने के लिए दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, धनबाद और दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के संवेदनशील रेलखंडों पर कर्मियों की तैनाती की है। कोइलवर, जयप्रकाश सेतु, क्यूल समेत प्रमुख रेल पुलों पर गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही रेलगाड़ियों की गति सीमा 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित कर दी गई है। इसके साथ ही संवेदनशील रेलखंडों के कई स्थानों पर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सेंसर लगाए गए हैं। जलस्तर के खतरे के निशान के पास पहुंचते ही सेंसर के माध्यम से अधिकारियों के मोबाइल पर अलर्ट मिलने की व्यवस्था की गई है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। राज्य के पूर्वी चंपारण के 7, पश्चिम चंपारण और मधुबनी जिले के 3-3 लोग अभी भी लापता हैं। परिजनों के अनुसार इन लोगों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इधर अब तक 4,400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राहत और बचाव कार्यों में 15,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

0: AIR@90. समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे @AIR_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के 45,000 गांवों में जमीन लगान नहीं चुकाने वालों की पहचान की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि विभाग अपना राजस्व बढ़ाने के लिए हर गांव में 100 बड़े बकायेदारों की पहचान कर रहा है। उन्होंने बताया कि इन बकायेदारों को SMS भेजकर लगान जमा करने की सूचना देने की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके लिए राजस्व विभाग NIC के माध्यम से विभाग को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि कई जिलों में जमीन के दस्तावेज अब भी पुरखों के नाम पर दर्ज हैं और इन जमाबंदियों से रैतों के मोबाइल नंबर लिंक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ देने के लिए सभी अंचलों में मोबाइल और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया भी जारी है। मंत्री ने बताया कि राज्य में जमीन का सर्वे भी किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही 80% भूमि विवाद समाप्त हो जाएंगे। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मॉनसून की ट्रफ लाइन पूर्णिया होते हुए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और रोहतास जिले में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 30 अगस्त को राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के जिलों के अनेक स्थानों पर, जबकि शेष भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: गया जी जिले के गुरपा पर्वत पर मूसलाधार बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक लोग झुलसकर घायल हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
2: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: प्रदेश के वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता सतीश आनंद का कल दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। सतीश आनंद ने JP आंदोलन को रंगमंच के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने और उसे धार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका अंतिम संस्कार आज दिल्ली में किया जाएगा। वरिष्ठ रंगकर्मी के निधन से राज्य के रंगमंच और कला जगत में शोक की लहर है। पर्यावरण, वन एवं

0: जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य के 276 जल स्रोतों का विकास वाटर स्पोर्ट्स और रिवर सफारी के लिए करेगा। विभाग के अनुसार पटना में गंगा, बेगूसराय में कांवड़ झील, गया जी में फल्गु नदी और नालंदा के घोड़ा कटोरा समेत अन्य स्थानों पर इसे शुरू किया जाएगा। कटिहार जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित पति को 12 वर्ष कारावास के साथ 25,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पटना जिले के दीघा थाना क्षेत्र के पूर्व थानाध्यक्ष संजीव कुमार पर कोर्ट के आदेश के बाद एक मामला दर्ज किया गया है। पटना जिले के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक बंद कमरे से 122 एटीएम कार्ड, बैंक चेकबुक और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने रग्बी फुटबॉल संघ के सचिव की पत्नी पर धोखाधड़ी करने के आरोप में कंकड़बाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने नेपाल त्रासदी पर लिखा है, अब जिंदगी बचाने की जंग, नेपाल ने मांगी मदद। 8 जिलों में करीब 1,00,000 लोग बेघर, 275 भारतीय अब भी लापता। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कोचिंग कारोबार में बिहार देश में तीसरे पायदान पर, हर माह औसतन 1100 करोड़ रुपए का है कारोबार। दैनिक भास्कर दारोगा बहाली पर लिखता है, दारोगा बहाली में स्टोर रूम में खींची थी पेपर की फोटो, ईओयू संभालेगी पूर्णिया और गया केस। प्रभात खबर ने लिखा है, दलित आरक्षण में कोटा पर टकराव, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, खेल दिवस पर 29 खिलाड़ी और 12 कोच किए गए सम्मानित। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने नेपाल त्रासदी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की औपबंधिक सूची कल जारी होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य के 45,000 गांव में जमीन लगान नहीं चुकाने वालों की कर रहा है पहचान। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और रोहतास जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के सामईन को एजाज हुसैन का सलाम आदाब। सामईन, इंसान की पहचान उसके लिबास, उसके माल व दौलत या उसके चेहरे की बनावट से नहीं बल्कि उसकी सोच से होती है। कहते हैं कि परिंदे परों से उड़ते हैं मगर इंसान अपनी सोच के दम पर आसमानों की वसतों को छू लेता है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सामीन, आखिर ये ऊंची सोच है क्या? और आज हम बात कर रहे हैं ऊंची सोच के बारे में, तो ये ऊंची सोच आखिर है क्या? क्या ऊंची सोच का मतलब सिर्फ ऊंचे महलात के ख्वाब देखना, बड़ी गाड़ियों की तमन्ना करना या शोहरत हासिल करना है? ये बिल्कुल नहीं है। ऊंची सोच दरअसल वसत कल्ब, कुशादा नजरी और मुस्बत किरदार का नाम है। ऊंची सोच वह है जो इंसान को खुदगर्जी के तंग दायरे से निकालकर इंसानियत की फलाह के वसी उफक पर ला खड़ा करती है। तो सामीन, इसके मुतालिक और भी बातें करेंगे इस गजल के बाद।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: पठानपट्टी सुपर गेम खुशी
1: जी। जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: ठीक हूँ, आप बताइए।
1: हम सब भी अच्छे हैं।
2: नाश्ता वास्ता हो गया?
1: हाँ, नाश्ता करके आते हैं। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं?
2: कुछ फोन लगा रहे थे।
1: अच्छा, कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: शाहरुख खान का बता दीजिएगा हिंदी सॉन्ग।
1: शाहरुख खान का तो हिंदी सॉन्ग बहुत सारा अच्छा अच्छा है, आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: तूने जो परफॉर्म मेरी जान, तुझे मर मिट जाऊंगा, वही वाला।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ है,
2: वही करते
1: हैं। ओके, तो गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: सलाम अलैकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या खैरियत है?
1: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। खाना पीना हो गया?
1: जी खाना पीना तो हो गया है, आप बताइए आपका हो गया?
0: हाँ, मैम एक गाना सुनना था।
1: बता दीजिए कौन सा?
0: ये नहीं है दिल के अरमासूम बह गए, नया निकला है।
1: नया सॉन्ग दिल के अरमासूम बह गए?
0: हाँ,
1: ये तो मतलब पुराना सॉन्ग है, फिर से इसको नया किया गया है?
0: हाँ नया सॉन्ग है।
1: अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगी और इसी को बजा लूंगी। ओके
0: हाँ,
1: और गाना सुनाना भी है?
0: हाँ, सबसे पहले आपको और जितना रेडियो सुन रहे हैं सबको।
1: ओके तो गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है मैम,
1: सुनते हैं रेडियो 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: Jab phone kende bajte hai to kehte hai hello.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
15: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
15: बिल्कुल, नाम बता दीजिए गाने की।
14: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ वेस्ट मुंबई से, मैं गोपालगंज के रहने वाला हूँ।
15: आज बहुत दिनों बाद।
14: जी मैम, थोड़ा टाइम नहीं मिलता था इसी के लिए।
15: अच्छा जी,
14: मुझे गाना सुनना है, कोई भी गाना अच्छा जैसा सुना दीजिए।
15: अच्छा, कोई भी गाना आज
14: चाहिए। गाना सुना दीजिए मैम, रब जैसा रूप तुम्हारा देता है सहारा, ये गाना।
15: और गाना सुनाएंगे भी किसी को?
14: हाँ जी, सबसे पहले आपको, मासूम, कौसर, जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, नौशाद भाई, चाकी भाई, फरहान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लकी भाई, रोबीना जी, दीदी जी, हिना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, सबनम जी, गुलशन जी, रोशनी जी, सलेहा जी, अफरीन जी, अरिशा को।
15: अच्छा जी, तो गाना प्ले करें।
14: जी
15: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
14: मैम बोल रही क्या मैम?
15: हाँ
14: जी मैम, बहुत अच्छा।
15: जी जी

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते,
0: वर्मा कुमार बोल रहे हैं कला मोटिंगे से।
1: हाँ जी, क्या हालचाल है आपका?
0: ठीक है जी, हालचाल आपने सुनाई?
1: मेरा भी ठीक है।
0: गोपालगंज का मौसम कैसा था?
1: गोपालगंज के तो मौसम अभी ठीक बाबे,
0: गर्मी कैसे होने रहे, बहुत धूप निकल रहा है पंजाब मेरे अंदर।
1: अच्छा ना, इन्हें तनिक धूप नहीं है और थोड़ा थोड़ा गर्मी बा।
0: अच्छा जी, गाना सुनने के बाद गाना कॉल लगाओ तनिक, कॉल करा कॉल लगा
1: बता दे।
0: अपने पसंद के सुना दे
1: हम तो रोज सुनाबे करने लोगन के आपका पसंद दिन भर तो हम
0: फरमाइशी तो हमको बना करी ला रहे सुना दे।
1: अच्छा तो कर दिया आज?
0: ना अपने पसंद से सुना दे।
1: आज हमारा रघु पसंद के सुने के बाबे,
0: हमारा पसंद के सुने के बा। नहीं रघु अपने पसंद के सुना दे।
1: ना ना
0: भोजपुरी बजा दे।
1: भोजपुरी?
0: हाँ जी।
1: रघु बताई ना आज हम कहा तो मानी रहुआ बताए तब हम सुना।
0: आज हम बताए तो सुना है। भोजपुरी में बजा दे कौन हो हमारा कौन सब अच्छा बात है, उतना खराब भी ना।
1: अच्छा,
0: खेसारी लाल के गाना बजा दे।
1: खेसारी लाल के ठीक बा।
0: और भारती के नंबर नहीं लगा लगा तो उठाओ नहीं हुआ के लेकिन का प्रोग्राम में
1: हम तो भारतीय बोला था।
0: अगर रही नंबर तो एक नंबर बात 6516 वाला जो की कॉल के माध्यम से नंबर बा नाम बा
1: वो हम ही चलावे।
0: अगर रवि चला तो कॉल के माध्यम से लगा देता तो कॉल रिसीव नहीं करो
1: तो कॉल
0: तो प्रोग्राम तो रोज रोज चले प्रोग्राम। अच्छा जी, इतना तो हम रेडियो सुन रहे नाम भी नहीं मान लगे राहुल नाम बाकर नाम बाहर नाम नहीं।
1: हाँ
0: जी,
1: ना इसमें हम कबू कबू मतलब हम रिकॉर्ड करे नहीं लेकिन ज्यादातर उसमें हम ही रहे।
0: अच्छा जी।
1: अच्छा
0: वहाँ का छुट्टी बा?
1: ना वहाँ के छुट्टी नहीं है जीवन।
0: ठीक है, गाना सुना दे खेसारी लाल के रेडियो सुनने वाला के सबके रोजरा खातिर तीनों आदमी के।
1: ठीक बाबा, तो गाना प्ले करते नहीं?
0: हाँ जी, कब तक सुनाएंगे, शाम के बाजी की काल बाजी?
1: आज ना तो काल तो बजबे करी, यही दो दिन में बाजी।
0: अच्छा, खेसारी लाल के बजाएंगे गाना।
1: ठीक बा,
0: ठीक बा,
1: सुनाते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AM पर।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो,
13: नमस्कार मैम।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
13: जी मैं सुधीर कर बोल रहा हूँ, कोरिंग जिला देवघर झारखंड से मैम।
7: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
13: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
7: हम भी ठीक हैं।
13: और आप रेडियो रंजन के जितने आर्जी सर हैं कैसे हैं?
7: सब कुछ अच्छा है।
13: आज सुनाइए मैम, रक्षाबंधन का गाना।
7: गाने की बोल बता दीजिए।
13: भोजपुरी फिल्म का ही गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, इसके बोल हैं रखिया बंधा ले भैया सावन आई, इसके बोल हैं।
7: और गाना सुनाना भी है
13: जी। सबसे पहले मैं आपको रेडियो रंजन के जितने भी लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ दिल से।
7: बिल्कुल जी, तो गाना प्ले करते हैं
13: जी मैम।
7: सुनते रहिए रेडियो रंजन 91.4 एफएम।
13: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम, राजेश अमरसिया रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं हमारा तरफ से पकिया।
1: जी, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी, तो कदम बढ़ाते हैं फरमाइश की तरफ।
1: बिल्कुल,
0: वो तिरंगा फिल्म का गाना है, इसे समझो न रेशम के तार भैया, यही गाना सुनना है।
1: जी, और गाना सुनाना भी है।
0: जी, सबसे पहले आपको और रेडियो रिमझिम के सुपर स्टार फैन है हुसनियारा मलिक है, संतरा कुशवाहा जी है, और सभी गोपालगंज जिला वासियों को, सिवान जिला वासियों को, और हम अपने पूरे परिवार के साथ सुनेंगे।
1: ओके, तो गाना सही करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: जी नमस्कार भारती जी,
12: नमस्कार।
11: समाचार
12: समाचार सर ठीक है?
11: बाकी आवाज बोल छा लेता नहीं दी,
12: थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है।
11: वो गाना बटे छोटी छलिया के, अलग मिठाइया बट, अलग अलग बा मिठाइया, अलवे बटे रखिया बहिन हमारा, ऐसे ही कुछ गाना बटे, घर द्वारा गाना बटे
12: रखिए। छोटो
11: छोटो छलिया,
12: अच्छा गाना सुना बा?
11: गाना तो सबसे पहले रुआ का सुनावे के बाद बानी सोनू भाई, सभी भाई बानी, महबूब वाला मुस्तफा, गुलाम जी, राम कुमार पांडे भैया जी हैं और अक्सरी जी हैं, अमर भाई हैं, कुसुम जी, सभी कर्मचारी, ये भी तमाम श्रोता बन गाना सुनिए उन सभी को गाने के लिए। नमस्कार
12: नमस्कार, गाना सुनते रहिए रेडियो।

0: हेलो
1: जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं साहेब राव पवार बोल रहा हूँ, ग्राम सामरबो तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है। आज का दिन है,
0: सुन
1: रहा था कार्यक्रम। जी पहली बार लगाया हूँ फोन, आज ही सुना हूँ मैंने ये कार्यक्रम।
0: अच्छा,
1: कौन बोल रहे मैडम?
0: मैं तो भारती बोल रही हूँ।
1: जी जी,
0: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
1: ब्लैकमेल का है, पल पल दिल के पास।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: गुनगुनाना नहीं आता वैसे, मगर फिर भी थोड़ा सा सुना देता हूँ। पल पल दिल के पार तुम रहते हो।
0: इतना अच्छा तो गा रहे हैं।
1: ठीक है, बस ऐसे ही आ जाता है थोड़ा सा।
0: आप अच्छा गा रहे हैं सच्ची में।
1: जी
0: अच्छा गा रहे हैं आप।
1: अच्छा अच्छा जी, थैंक यू।
0: और गाना ये सुनवाना चाहते हैं किसी को?
1: जो रंजन में जो सुनते हैं उन सभी के लिए रहेगा बहन जी, और आपके लिए।
0: जी जी बिल्कुल, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: जी जी, थैंक यू।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
7: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, सलाम मैम।
9: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: जी मैम, कैसे हैं? हम सफरोज अली गोपालगंज से।
9: मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
10: जी हम भी अच्छे हैं, लेकिन आपका आवाज कुछ चेंज लग रहा है, लगता है आपका तबीयत सही नहीं है मैम।
9: हाँ थोड़ा सा है,
10: लेकिन ये बता सकते हैं कि भारतीय मैम बोल रही है, फिर भी आप ही रिकॉर्डिंग कर रही है, मनोरमा मैम नहीं है आज?
9: है मनोरमा मैम।
10: आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गया मैम, हम लगाते लगाते कॉल,
9: आधा घंटा लेट है,
10: तो आज तो नहीं चलेगा।
9: देखिए आज नहीं तो कल चल ही जाएगा, क्योंकि सारा कॉल मैं ही रिकॉर्ड करूंगी।
10: अच्छा, आज सब आप ही करेंगे? मैम उस सोमवार वाला वो मनोरमा मैम रिकॉर्ड की थी क्या आधा के बाद, क्योंकि सुन रहे थे और रात में 12 बजे चलता है रिपीट हेलो माय चॉइस का, सुन रहे थे हम, 12 बजे चल रहा था।
9: अच्छा,
10: तो आज हमें 11 गाना सुनवाइए,
9: बता दीजिए।
10: जी गाने का नाम है मोहब्बत से ज्यादा।
9: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
10: गाना है
9: बोल रहे हैं, गाना सुनाना
10: है आपको, सभी आरजे को, जितने भी हमारे दोस्त सुनने वाले हैं सभी को।
9: तो अब अभी क्या?
10: अभी तो मैम हम स्टेशन जा ही रहे थे, तब तक सोचे कि बात कर ले आपसे।
9: अच्छा, तो छपटा से निकल रहे हैं कि?
10: जी मैम हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो सोचे कि इसी टाइम में मिल रहा है तो टाइम में बात कर ले और गाना का फरमाइश कर दे।
9: चलिए वहाँ का काम खत्म हो गया।
10: जी मैम काम तो खत्म हो गया, इसलिए सोचे निकल जाए। अपना गोपालगंज का बहुत ज्यादा याद आ रहा है, गोपालगंज जैसा तो कोई मतलब जिला ही नहीं है,
9: कहीं लगता ही नहीं। अच्छा
10: जी मैम कहीं अच्छा नहीं लगता है गोपालगंज के अलावा, गोपालगंज तो बात ही अलग। कहीं भी रहते हैं मैम रेडियो को सुनते रहते हैं और आप लोगों से बात करते रहते हैं। जी मैम तो गाना फुल सुनाइएगा, बहुत अच्छा गाना है।
9: जी बहुत अच्छा गाना है, सुना दूंगी।
10: आपको भी अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं।
9: हाँ हाँ अच्छा लगेगा, क्यों नहीं, गाना ही अच्छा है इतना।
10: जी मैम एडवांस धन्यवाद। आज मनोमा मैम से बात हो जाती तो अच्छा लगता, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो रहा है आजकल।
9: होगा फिर कभी।
10: जी मैम धन्यवाद, बाय बाय मैम।
9: ओके बाय बाय। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
10: ओके मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम
2: जी। नमस्कार, मैं प्रणाम।
1: प्रणाम।
2: राजू यादव, ग्राम उपनेगा श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: कैसे हैं आप?
2: हम तो बहन बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वर हैं बिंदास।
1: जी ऐसे ही होना चाहिए।
2: गीत सुना दीजिए बहन।
1: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गीत।
2: अपनी पसंद का कोई भी रक्षाबंधन गीत चला दीजिए या किसी गीत में शामिल कर दीजिए। और भोजपुरी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, वो चलता है 3-4 बजे।
1: तो भोजपुरी केवल संडे को चलता है।
2: हाँ हाँ, भोजपुरी एक्सप्रेस।
1: हाँ हाँ
2: जी जी बहन प्रणाम।
1: रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87-894-18744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94 FM में।
5: जी नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते।
5: हेलो।
6: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
5: आपका छोटा भाई बोल रहा है, कुमार, चिंतापुर से।
6: अच्छा, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, इसलिए मिस्टेक हो गया पहचान। कैसे हैं आप?
5: और बढ़िया मैम, आप कैसे?
6: हम भी अच्छे हैं।
5: अच्छा, अब रक्षाबंधन आ रहा है ना?
6: नहीं आ रहा है।
5: तो आपसे राखी भी बनवाना है ना मैं?
6: बिल्कुल आइए, बिल्कुल बांध देंगे।
5: हम मालूम न कहाँ घर है आपका।
6: रेडियो स्टेशन में ही आ जाइए, यहीं पे बांध दिया जाएगा, और क्या।
5: रेडियो स्टेशन में?
6: हाँ हाँ।
5: अच्छा, आएंगे तो आएंगे वहाँ।
6: बिल्कुल आइए।
5: तो कोई आने देगा हम तो?
6: अब ये तो मैं नहीं बता सकती, ये कृपा शंकर सर भी बताएंगे।
5: अच्छा, और सोनी सिस्टर कैसी है?
6: वो भी अच्छी है।
5: ये मुनारमा जी?
6: सब तो अच्छे हैं, ये भी अच्छी है।
5: अच्छा, आपसे बहुत काफी दिन हो गया था बात करने हुए। खाली मुनारमा जी से बात हो रहा था। हम उनसे पूछ रहे थे कि भारती मैम कहाँ चली गई, भारती मैम कहाँ चली गई। वो बोले कि उन लोग का अभी रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है।
6: नहीं तो वो जो होता है ना उसमें अभी ना दीजिए।
5: और बताइए क्या हाल चाल है?
6: ठीक है।
5: मौसम कैसा है गोपालगंज में?
6: गोपालगंज का मौसम अभी बहुत ही सुहाना है।
5: अच्छा, रक्षाबंधन से हम 2-4 दिन पहले आ रहे हैं घर से।
6: आई बिल्कुल।
5: हाँ, आएंगे, राखियों से बनवा करके गिफ्ट उफ्ट दे करके फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे अपने नोएडा में।
6: मैंने बहुत खुश होंगी क्या इस बार आपके, मतलब आप जा रहे हैं उन लोगों के पास।
5: नहीं, मेरे को आए हुए आज 2 महीना दिन हो गया, पहुँचेगा रक्षाबंधन में तो जाना ही जाना है।
6: मतलब हमेशा कभी राखी में घर ही न रहे हैं, कभी दूर भी रहे हैं।
5: नहीं, कहीं भी रहेंगे तो रक्षाबंधन में जाना ही जाना है, रक्षाबंधन में, छठ पूजा में।
6: सब बढ़िया है।
5: हाँ, मम्मी छठ करती है ना, तो छठ पूजा में जाना जरूरी रहता है।
6: कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए?
5: आज गाना सुनना है तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, यही वाली सॉन्ग।
6: इतना अच्छा गाते हैं फिर भी गाके नहीं सुनाते हैं
5: कितना अच्छा गाते हैं मैडम, मजबूरी में हम आए हैं ना दिल्ली में, यहाँ शौक से कमाते हैं।
6: अच्छा।
5: मेरे दो दो भाई विदेश रहते हैं, दुबई, एक का नाम है राजन, एक का नाम है निरंजन। छोटा वाला निरंजन है, निरंजन गुप्ता, और माझिल वाला है वो राजन गुप्ता है।
6: अच्छा।
5: मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा ही एक शादी हुआ है, उन लोग का अभी नहीं हुआ है, अभी उन लोग अभी कमा रहा है, खा रहा है, अभी उड़ रहा है, अभी अकेला मौज में रहा है।
6: हाँ।
5: अभी घर का प्लानिंग है, अभी घर और बनवा रहे हैं, उसके बाद उनको उन लोग को शादी करेंगे।
6: प्लानिंग के साथ काम अच्छा होता है।
5: और सब मजे में है ना मैम?
6: सब मजे में।
5: ये सॉन्ग आपको सबसे पहले आपको सुनवाना है। आज जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब श्रोताओं को, जितना हिमतापुर को रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको।
6: जी जी बिल्कुल।
5: हाँ,
6: कैसे गाना प्ले करते हैं सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
5: ठीक है, ओके मैम।
6: ओके,
5: नमस्ते। नमस्ते
6: नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 में।
0: मधु सर से राजू कुमार बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपको?
0: ठीक है, गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा
0: गाना सुनना है। शाम है धुआं धुआं,
1: हिंदी सॉन्ग है ना?
0: हाँ, हिंदी सॉन्ग
1: जी, बिल्कुल। और गाना सुनाना भी है?
0: अभी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को।
1: ओके, गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
0: ठीक है।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाते हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
9: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 एफएम में।
15: मैं मोहम्मद यूसुफ अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला से बोल रहा हूँ।
14: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
15: हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अपना सुनाइए।
14: मेरा ठीक है, तो आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
15: चले गए थे उमरा करने, हज करने जाया जाता है ना?
14: हाँ,
15: इसमें मक्का मदीना चले गए थे, एक महीना उसी में लग गया,
14: इसीलिए ना,
15: इसलिए बात वहाँ का सिम अलग रहता है ना। हमारे प्रोग्राम आपका सुनते थे, वहाँ भी परेशान होता था तो लगता था आपका। हाँ, कॉल नहीं लग रहा था। वहाँ भी सुन रहे थे। मौसम तो ठीक हो रहा है, पानी वगैरह हल्का फुल्का हो जा रहा है।
14: हाँ, पानी हो ही जा रहा है और अभी भी थोड़ा मौसम, उतना धूप नहीं है
15: ना, ना हल्का धूप और छाव दोनों है। आपका कस्टमर इतना हो गया है रिव्यू के, बहुत देर तक करना पड़ता है तब जाकर लगता है। बहुत देर से लगा रहे थे।
14: पड़े हुए हैं थोड़ा।
15: और सब बढ़िया है, हमको गाना सुनाइएगा।
14: बिल्कुल बता दीजिए।
15: ये नन्हे से फरिश्ते तुमसे ये कैसे नाता।
14: अच्छा, और गाना सुनाना भी है।
15: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर फौजी से रिटायर है कन्हैया प्रसाद गुमनिया के हैं, सिपाया डाला तो इधर आप आई नहीं होगी। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, सैनिक स्कूल, बीटेक कॉलेज सब यहीं पर है, हमारे ही पास है। राजापुर मेला यहीं से जाया जाता है।
14: उधर से कभी गए हुए हैं।
15: राजापुर मेला आइए एक बार।
14: बिल्कुल आएंगे कभी।
15: हाँ, मेला लगता है तो आपको याद करेंगे कि मेला कल है या परसों है।
14: अच्छा जी, बिल्कुल।
15: आइएगा हमारे यहाँ दुकान पर, रुकिएगा अपना मेडिकल हॉल यहीं पर रुकिएगा, नाश्ता पानी यहीं पर होगा, खाना भी आपको खिलाएगा।
14: अच्छा।
15: आप लोगों से जुड़ गए, रेडियो हमको लगा हो गया है। बराबर सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
14: चलिए बढ़िया है,
15: ठीक है, सुना दीजिएगा। हो सकता है कल कहीं जाना आएगी।
14: अच्छा, आज नहीं तो कल आ जाएगा।
15: हाँ हाँ, ठीक है, शाम में सुनेगा।
14: ठीक है,
15: ठीक है, धन्यवाद।
14: रेडियो रमजी में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 99.4 FM में।
1: जी मैम नमस्ते, मैं ग्राम धनौती पोस्ट कटिया थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार से हूँ।
0: जी जी
1: मैम कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: सब आप लोगों का कृपा है, हम लोग भी बढ़िया है, बस काम काज चल रहा है। अभी फिलहाल मैं पुणे में है हम।
0: अच्छा
1: जी, और अपना गोपालगंज का बताइए कैसा है मौसम वहाँ का?
0: गोपालगंज बारिश मौसम तो अभी सुहाना बना हुआ है, बारिश जैसा ही मौसम हो रहा है अभी।
1: अच्छा अच्छा, यहाँ भी तो बादल छाया हुआ है, कभी कभी रुक रुक के बारिश भी हो रहा है। यहाँ पहाड़ी इलाका है तो मौसम का हो रहता है, बारिश आता जाता रहता है यहाँ का।
0: चलिए उतना से गर्मी नहीं होता होगा ज्यादा।
1: हाँ मैम अभी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्म नहीं है, मौसम तो एकदम ठंडा है, सुहाना ही मौसम है लगभग मानिए तो।
0: आप क्या काम करते हैं?
1: यहाँ पे मैं फैब्रिकेशन का काम।
0: हाँ
1: और एक गाना सुनना था मैम,
0: बता दीजिए।
1: मुझे लाकर समझाया दिल ने मेरे, मगर मैंने दिल की न मानी, दीवानी में दीवानी सजन की दीवानी। गाना की बोल रही है और मेरा दोस्त है प्रमोद और अमित ओम प्रकाश, इन्हीं लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ और खास करके रेडियो रिमझिम परिवार को और जितना भी श्रोता सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी।
0: बिल्कुल,
1: लगाते हैं कॉल लगता नहीं है, थोड़ा अफसोस होता है कि, लेकिन भाई अभी भी समझदारी होता है कि भाई कब अगर मेरा चांस मिल जाएगा तो देखा जाएगा, तो लगता है तो इतनी महसूस होता है कि चलिए मेहनत सफल हो गई तो कुछ अलग ही, मतलब
0: कुछ अलग ही
1: अपना। हाँ हाँ, आप लोग से बात होता है तो थोड़ा मन का सुकून मिलता है कि चलो रेडियो रंजन के माध्यम से दूर दूर तक कहाँ कहाँ जितना भी श्रोता सब सुनते हैं, एकजुट होते हैं। जब हेलो माय चॉइस प्रोग्राम जब चालू होता है तो उसका उस टाइम का पल ही कुछ अलग ही है कि हाँ भाई एक परिवार हो जाता है ना, सब जुड़ता है एक साथ तो अच्छा लगता है।
0: वहाँ पे जुटते हैं सब, कोई आपस में अपनी बातें करते हैं।
1: जी जी जी, तो मैं तो बहुत पुराना हूँ रेडियो रंजन का, बहुत कॉल लगाता हूँ लेकिन कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो फिर भी मैं जानता हूँ कि अफसोस कर रहे हैं क्या बात है भाई, सभी दर्दों को सभी लोगों का मन का जितना मुझे खुशी होती होगी नहीं और लोगों को भी खुशी होता होगा ना कि भाई हम भी बात करेंगे, हम भी अपना फरमाइश चॉइस में अपना गाना सुनेंगे। और सबसे हाल चाल जब मिलता है तो हम लोग पूना में भी रहते हैं तो अच्छा लगता है कि अपने गांव का अपने जवार का जो भी हम लोग का कटिया में चाहे कहीं भी कुछ भी होता है तो उसके माध्यम से मालूम पड़ जाता है, चाहे अपने जिला में कोई भी मतलब कार्य होने वाला होता है नया, चाहे कुछ नया नियम आने वाला होता है, तो रेडियो रिमझिम के माध्यम से सब मिलता है तो अच्छा लगता है। तो हम लोग पहले ही एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भाई अपने जिला में काम होने वाला है, ऐसा हो रहा है, यहाँ ये चीज होने वाला है, तो अच्छा लगता है कि पहले अपना यहाँ नहीं था लेकिन वो आप लोगों की कृपा थी कि हम लोग के लिए, हम लोग खातिर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, अच्छा लगता है। जितना भी अगर तारीफ करेंगे हमारे लिए तो कम है।
0: आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, इसके लिए धन्यवाद है आपको।
1: जी जी जी मैम, आप ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, हम सब ठीक है।
1: खाना वाना खाई?
0: हाँ खाना खा के आते हैं।
1: अच्छा, हम लोग भी ड्यूटी है लेकिन ड्यूटी के दौरान मेरे को याद आया कि भाई आज कॉल लगाते हैं तो फिर कॉल किया। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, लगभग एक घंटा के आसपास काम छोड़ दिए थे। जब काम होता है, जब ये दिन आता है तो सोचते हैं पहले कॉल लगाएंगे उसके बाद काम देखा जाएगा। बात आप लोगों से होता है तो लगता है कि हाँ मतलब कुछ सुकून दिल का मिल गया कि हाँ मेहनत मेरा जो जारी था वो सफल लग गया तो अच्छा होता है।
0: चलिए अच्छा लगा
1: आपसे भी बात करके मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं इसके पहले भी जितना भी पहले आपसे पहले जो भी आपका मनोरमा नाम है ना?
0: नहीं।
1: अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है मैम?
0: मेरा नाम भारती।
1: अच्छा भारती, ठीक है मैम।
0: गाना प्ले करें?
1: हाँ मैम गाना प्ले करिए। नमस्ते
0: रेडियो।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3

0: रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
7: बड़ा लेट सर, फोन नहीं आनु नंबर।
6: ना ना सर, फोन कर ले रानी हद तने होने ही बिजी हो गई है। बोली
7: नवाज प्रसाद बोल रहे हैं सारे राधे मार्ग से।
6: हाँ हाँ,
7: गाना सुने बा
6: बता दें।
7: जा रे जा रे सुगना जा रे कह दो सजनवा से।
6: गाना सुना हूँ के बा।
7: हाँ ठाकुर बाले हमारे सार रिकॉर्ड करे की बहुत फल लगा होता रहे। गाना सुना बा इलेक्शन भाई बाले जितना रेडियो सुना सब कोई।
6: अच्छा जी, चल ठीक बा।
7: हाँ सब ठीक बा, हवा भी बहुत ठंडा भी दिन बा।
6: हाँ हाँ, चले फिर ठीक बा। गाना प्ले करते हैं।
7: नमस्ते
6: नमस्ते, सुनते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 91.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मनोरमा मैम बोल रही है ना?
0: नहीं,
1: भारती मैम बोल रही है।
0: हाँ,
1: तो हम कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैम, हम भी अच्छे हैं।
0: वैसे आपका नाम बता दीजिएगा।
1: जी मैं पप्पू कुमार साहब पढ़ रहा हूँ ना, बड़ा रियल से।
0: अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है आपका?
1: जी मैम बढ़िया है, अपना सुनाइए आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: और सब हरदी लोग अच्छे हैं?
0: हाँ, सब कोई ठीक है।
1: तो मैम गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: रंगा फिल्म में जो राखी बंधन का गाना है वही गाना सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी चाहेंगे?
1: और मैम गाना जितना भी मेरे भाई बहन है सभी सुनेंगे, सभी श्रोता आप भी सुनिएगा, सभी आगे लोग भी सुनेंगे।
0: बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 6252162112 पे।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9435 6551 या 97।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसटी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स।

0: NH27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है, इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं? जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था। आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के 5वें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर 4था विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर 4था विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था, जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीते अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम की अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने PM स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: दिल कहे रे ग।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बाल मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
3: All right.

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
9: दिल कहे।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: दिल कहे रे जिया।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470309092 या 9765665750।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: दिल कहे रे

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
5: दिल कहे रेडियो।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: कहाँ बाला?
1: घरे बनी।
0: अरे जल्दी आओ ना।
1: अरे इतना जल्दी का बा?
0: हमरा इसे कुछ नहीं के सुने के, जल्दी आओ ना।
1: अरे तो इतना घबराई का है बड़ी?
0: हमरा जिंदगी और मौत के सवाल बा, प्लीज जल्दी आ जाना।
1: ठीक बा, आओ।

0: मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: दिल कहे रे।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: दिल कहे।

0: ए और कतनी जाए के लेट रहता
1: क्या इतना हबड़ाए रहते हैं।
2: अरे का करता रे ऊपर रे
3: बाबूजी नहाय तनी
2: काम पर जे है सब माइयो के ले ले जे है रजेंद्र बाबू के डोखनवा पे छोड़ दिए दवाई खत्म हो गई बा।
3: ठीक बा बाबूजी
0: ए बेटू रखता नहीं
1: ना हम कुछ नहीं जान रहे अभी बात करना है बस।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779714861।
4: दिल कहे रे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्रीम 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
6: दिल कहे

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
10: दिल कहे रे।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
2: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: दिल कहे रे

0: नीचे मत करें।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470309092 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 5702।
5: दिल कहे रे जी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029494 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस

0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
1: पटना से।
0: तकिया? तकिया से?
1: तकिया नहीं, पटना।
0: पटना से?
1: PATNA पटना,
0: वही ना पटना। तो क्या करते हैं शिवम जी?
1: तैयारी करते हैं
0: BPSC का। चलिए अच्छी बात है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
1: ग्रेजुएशन कम्प्लीट है।
0: ओके चलिए अच्छी बात है, ग्रेजुएशन कम्प्लीट है। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए? लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न। ओके आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए शिवम जी।
1: माँ का नाम है मनोरमा देवी और पापा का नाम है मनोज।
0: ओके तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न। ओके तो आपसे आपका पहला प्रश्न ये है शिवम जी,

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई, बी है 12 अक्टूबर और सी है 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जुलाई वाला को करते हैं।
0: जुलाई वाला जुलाई वाला करें 11 जुलाई।
1: हाँ।
0: कंफर्म है?
1: नहीं
0: तो लॉक करो।
1: तो बता दिया। हाँ,
0: तो चलिए शिवम जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 11 जुलाई को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑप्शन ए है समुद्री पौधे, बी है अमेजन जंगल और सी है हिमालय जंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: होगा
0: समुद्री पौधे।
1: कन्फर्म
0: है?
1: 80-90% यही बनाता है।
0: ओके, तो लॉक करो?
1: बिल्कुल।
0: ओके, तो चलिए शिवम जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए समुद्री पौधे को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत में पहली बार डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? भारत में पहली बार डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? ऑप्शन ए 1850, बी 1852 और सी 1855। आपका समय शुरू होता है अब। 1850, बी था 1852 और सी है 1855। हाँ,
1: बावन को लगाएंगे।
0: ओके, तो शिवम जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1852 को लॉक करते हैं। और बता दे, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो लिया जाए चौथा प्रश्न आपसे।
1: डाक टिकट कब जारी हुआ था?
0: हाँ, डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था?
1: 52 में हुआ था
0: जी, सिंध डाक टिकट।
1: ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
0: तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, किस भारतीय राजा ने सड़क एजाम का निर्माण किया था? किस भारतीय राजा ने सड़क एजाम का निर्माण किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी शेरशाह सूरी और सी हर्षवर्धन। आपका समय शुरू होता है अब। कन्फर्म है इसमें?
1: नामी से पता चल रहा है, उस समय आजम वाजम कहाँ होता।
0: जी जी, तो लॉक करूँ?
1: हाँ बिल्कुल।
0: ओके, तो चलिए शिवम जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी शेरशाह सूरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवे

0: प्रश्न के लिए।
1: हाँ
0: ओके, आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है, दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? ऑप्शन ए गौरैया, बी हमिंग बर्ड और सी सनबर्ड। आपका समय शुरू होता है अब। कंफर्म है?
1: हाँ बिल्कुल।
0: लॉक करूँ?
1: हाँ
0: ओके, तो चलिए शिवम जी आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हमिंग बर्ड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: हाँ
0: ओके, आज से आपका छठा प्रश्न ये है, भारत का पहला ध्वनि रोधी स्टूडियो किस शहर में स्थापित हुआ था? भारत का पहला ध्वनि रोधी स्टूडियो किस शहर में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मतलब
0: साउंड प्रूफ
1: है नहीं, मुंबई
0: को मुंबई ऑप्शन ए।
1: हाँ
0: कंफर्म है?
1: नहीं क्वेश्चन ही नहीं पता, कंफर्म करना है। कलकत्ता भी लग रहा है, मुंबई भी लग रहा है,
0: तो क्या लॉक करूँ?
1: जी आपका समझ में आना चाहिए,
0: आप बोलिए मुंबई को करूँ?
1: हाँ मुंबई।
0: ओके तो चलिए शिवम जी आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मुंबई को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर गलत है, सही उत्तर कोलकाता होगा ना कि मुंबई। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगले संडे फिर ट्राई करिएगा। हेलो जी रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम औरंगजेब है
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं औरंगजेब जी?
2: पाखो कॉलेज से
0: जी। क्या करते हैं आप?
2: हम पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: आई।
0: ओके लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। ओके आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पापा का नाम शेख अनवर आलम और
0: मम्मी का नाम एक बार और बता दीजिए।
2: खातून
0: जी। आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: यस किए थे।
0: ओके तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: ओके तो चलिए आपसे आपका पहला प्रश्न ये है,

0: गोपालगंज का पुराना नाम क्या है? गोपालगंज का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए मुबारकपुर, बी गोपालपुर और सी गोपाल कृष्णगंज। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम सी को लॉक कीजिए।
0: गोपाल कृष्णगंज को?
1: यस मैम कर दीजिए।
0: कंफर्म है?
1: नहीं मैम।
0: तो लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके तो चलिए औरंगजेब जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा मुबारकपुर, ना कि गोपाल कृष्णगंज। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
7: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
14: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
15: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
16: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
15: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
17: ठक ठक।
18: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
18: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
18: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
17: गुड आफ्टरनून, रेडियो इंजीनियरिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
19: सानिया सिद्दीकी।
17: सानिया
19: जी,
17: क्या करते हैं सानिया जी?
19: पढ़ती हूँ 7th क्लास में।
17: ओके, उसके अलावा और कुछ तैयारी करती हैं?
19: जी, घर से पढ़ती, स्कूल में भी जाती हूँ पढ़ने, और ये जो आरबी का पढ़ाई होता है ये भी कंटिन्यू है।
17: ओके, ये अच्छी बात है। तो आप इससे पहले भी कॉल की है क्या हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में?
19: संडे के, एक बहुत पिछले संडे की की थी।
17: ओके, आप जहाँ है वहाँ हल्ला की आवाज आ रही है, आप थोड़ा साइड हो जाए या फिर कहीं रूम में चले जाए?
19: घर के बाहर से बातचीत चल रही है, वही आवाज है।
17: आप कहाँ है अभी?
19: रूम में, घर में।
17: ओके, तो ध्यान रहे कोई आए ना, बोल दीजिए घर में कि आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट की रिकॉर्डिंग कर रही है। ठीक है,
19: ठीक है, रुक जाइए, मैं डोर मॉक रिकॉर्ड करूंगी।
17: जी जी, बोल दीजिए।
19: जी बोलिए।
17: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
19: हाँ हाँ।
17: ओके, आप अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
19: अबू का नाम शेख अनवर आलम, अम्मी का नाम शहनाज खातून।
17: ओके, लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
19: जी जी,
17: तो चलिए आज से आपका पहला प्रश्न ये है सानिया जी,

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ग्यारह जुलाई।
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: तो लॉक कर दूं?
1: कर दीजिए। ओके
0: तो चलिए शनिया जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन, सी ब्राजील। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ब्राजील का सांपों का देश कहा जाता है।
0: कंफर्म है?
1: एकदम कंफर्म है।
0: तो लॉक कर दें?
1: कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए शानिया जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ब्राजील को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑप्शन ए समुद्री पौधे, बी अमेजन जंगल और सी हिमालय जंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम समुद्री पौधे से।
0: कन्फर्म है?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए शनिया जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर समुद्री जंगल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्या की थी?
0: चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है?
1: ऑप्शन
0: गोरखपुर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद।
1: गोरखपुर को कर दीजिए।
0: कन्फर्म है?
1: नहीं लखनऊ की गोरखपुर को ही कीजिए।
0: ओके तो चलिए सानिया जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गोरखपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है गौरैया, बी है हमिंग बर्ड और सी है सन बर्ड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सबसे छोटा पक्षी दुनिया का?
0: जी
1: मैम सबसे छोटा पक्षी दुनिया का क्या क्या ऑप्शन दी थी?
0: गौरैया, हमिंग बर्ड, सन बर्ड।
1: हमिंग बर्ड होगा शायद, सबसे छोटा वही नहीं।
0: ओके तो आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हमिंग बर्ड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए? ओके आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, भारत में पहली बार डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? भारत में पहली बार डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? ऑप्शन ए 1850, बी 1852, सी 1855। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 1852 में जारी हुआ था।
0: कंफर्म है
1: जी, हिस्ट्री के टीचर बताए थे, मुझे याद है।
0: ओके, तो चलिए सानिया जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर 1852 को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, तुगलकाबाद किले के निर्माण में कौन सी प्रमुख समस्या आई थी? तुगलकाबाद किले के निर्माण में कौन सी प्रमुख समस्या आई थी जिसके कारण वह जल्द ही वीराना हो गया? ऑप्शन ए है ईंट की गुणवत्ता, बी है पानी की कमी, सी है लोगों का पलायन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम क्या?
0: हेलो
1: मैम, पानी की कमी आई थी शायद।
0: हेलो, हाँ लॉक करूँ?
1: पानी की कमी को लॉक कर दीजिए, पानी की कमी को।
0: ओके,
1: नहीं
0: आपकी कॉल म्यूट हो रही है।
1: नहीं मैम, नहीं हो रही है।
0: ओके चलिए ठीक है, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: वो गलती से हाथ से मेरे उससे दब गया ना, इसलिए हम जान बुझ के नहीं कर रहे हैं।
0: ठीक है, आगे से ध्यान रखिए।
1: जी जी एकदम
0: जी बिल्कुल। किस पौधे को वॉकिंग ट्री कहा जाता है? किस पौधे को वॉकिंग ट्री कहा जाता है क्योंकि यह धीरे धीरे अपनी जड़ों को बदलकर आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए बरगद, बी पाइन, सी मैग्रो। आपका समय शुरू होता है अब। हेलो
1: जी मैम,
0: ध्यान रहे, आपकी आवाज ऐसे आ रही है लेकिन फिर बीच में गायब हो जा रही है।
1: मैम मैं सोचू ना?
0: सोचिए, लेकिन आवाज आती है। मैं बात करती हूँ बाकी लोगों से और आपसे भी बात कर रही हूँ मैं।
1: ऑप्शन बी नहीं सोचूंगी, आप एक बार और सुन ली।
0: ऑप्शन ए बरगद, बी पाइन, सी मैग्रो।
1: ऑप्शन
0: आपके बगल में कोई है?
1: नहीं मैम, क्या बात कर रही हूँ।

0: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87894 18744।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
14: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
15: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
16: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
15: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
16: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
15: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80 029 94 21 80 029 94 21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
17: हेलो नमस्ते मैम।
18: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए आप अपना।
17: अंशु कुमार।
18: कहाँ से बात कर रहे हैं अंशु जी?
17: हेलो,
18: कहाँ से बात कर रहे हैं अंशु जी?
17: सहलादपुर।
18: अच्छा सहलादपुर, क्या करते हैं आप?
17: पढ़ाई करते हैं।
18: किस क्लास में पढ़ते हैं?
17: 9।
18: ओके, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है अंशु जी?
17: आगे का लक्ष्य कॉम्पिटिशन की तैयारी करना।
18: चलिए अच्छी बात है। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
17: यस।
18: लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न?
17: यस।
18: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
17: पापा का नाम जितेंद्र यादव, मम्मी का नाम बासमती देवी।
18: ओके, तो अंशु जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन थोड़ा फिर से रिपीट कीजिए।
0: ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर।
1: 11 जून।
0: जून?
1: हेलो।
0: हाँ 11 जून।
1: 11 जुलाई होगा मैम।
0: ओके कंफर्म है?
1: यस।
0: लॉक करूँ?
1: यस।
0: ओके कहाँ है, थोड़ा साइड हो जाइए, आपके बैकग्राउंड में बहुत ही हल्का आवाज आ रहा है। लॉक करें ना आपके पहले प्रश्न का उत्तर।
1: यस मैम।
0: ओके तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर 11 जुलाई बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: ओके आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय रिजर्व बैंक और सी भारतीय स्टेट बैंक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: भारतीय स्टेट बैंक।
0: कंफर्म है?
1: यस।
0: लॉक करूं?
1: यस।
0: ओके तो चलिए अंशु जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ना कि भारतीय स्टेट बैंक। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: रंजन बोल रहे हैं
0: जी, क्या करते हैं रंजन जी?
2: बीए चल रहा है मैम।
0: तो क्या आगे का क्या लक्ष्य है आपका?
2: गवर्नमेंट कॉलेज।
0: ओके तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ।
0: ओके तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: हाँ।
0: ओके आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए रंजन जी।
2: मम्मी का नाम लालपट्टी है, पापा के नाम
0: बताना। ओके तो चलिए रंजन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ग्यारह जुलाई को मैम।
0: कंफर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 11 जुलाई को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, अब से आपका दूसरा प्रश्न ये है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑप्शन ए समुद्री पौधे, बी अमेजन जंगल और सी हिमालय जंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: समुद्री पौधे।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म से नहीं लग रहा है ये।
0: ओके, तो लॉक कर दूं?
1: हाँ कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए समुद्री पौधे को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हेलो। यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, कौन सा ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में घूमता है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी शुक्र और ऑप्शन सी अरुण। आपका समय शुरू होता है।
1: फिक्स कीजिएगा।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए? आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? ऑप्शन ए गौरैया, बी हमिंग बर्ड और सी सन बर्ड। आपका समय शुरू होता है।
1: हमिंग बर्ड को मैं फिक्स कीजिएगा।
0: कंफर्म है?
1: हाँ ये वाला कंफर्म।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हमिंग बर्ड को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है पांचवे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत की किस नदी को साल में केवल एक बार बहने वाली नदी कहा जाता है? भारत की किस नदी को साल में केवल एक बार बहने वाली नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए माही नदी, बी लूनी नदी, सी मौसम नदी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बोलिए।
0: ऑप्शन ए माही नदी, बी लूनी नदी, सी मौसम नदी।
1: मौसम को थोड़ा फिक्स कीजिए, कंफर्म इसमें तो नहीं लग रहा है।
0: मौसम को फिक्स करें?
1: हाँ इसी को फिक्स कीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मौसम नदी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा लूनी नदी, ना कि मौसम नदी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रावास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87-894-18744।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
14: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
17: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
18: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
14: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
14: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
11: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
15: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
11: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
11: संपर्क करें 9939365923।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
19: रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
20: नमस्ते मैम।
19: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
20: सुधा कुमारी पासवान।
19: सुधा कुमारी पासवान, कहाँ से बात कर रही हैं सुधा जी?
20: बताड़े से
19: जी। क्या करती हैं आप?
20: पढ़ाई करती हूँ मैम।
19: किस क्लास में पढ़ती हैं?
20: 10th।
19: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
20: जी मैम।
19: ओके, आपका आगे का लक्ष्य क्या है सुधा?
20: मैम अभी तो सोची नहीं हूँ।
19: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
20: पिता जी का नाम है श्री सुमन मांझी कुमार, का नाम है श्रीमती चंदमती देवी।
19: ओके, आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं?
20: जी मैम।
19: ओके, लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
20: जी मैम पूछिए।
19: ओके, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है,

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए 11 जुलाई, बी 12 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर।
1: जी को लॉक कीजिए।
0: 12 अक्टूबर?
1: हाँ।
0: कंफर्म है?
1: नहीं मैम, कंफर्म तो नहीं।
0: ओके चलिए सुधा जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 अक्टूबर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 11 जुलाई, ना कि 12 अक्टूबर। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: ओके बाय मैम।
0: बाय।
2: हाँ हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: हाँ, एक बार आप 5 जवाब दिए थे, उसके बाद फिर 4 इतवार हो गया, 4 रविवार कभी बीजे रहता है, बीजे रहता है। तो अब बताइए, आप हमसे प्रश्न पूछिए, ऐसे आदमी से प्रश्न पूछते हैं 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास में, हम जब जवाब देने लायक बैठे हुए हैं।
0: नाम बता दीजिए आप अपना।
2: रमन प्रसाद, रमन जी करते हैं आप लोग।
0: रमन?
2: हाँ,
0: रमन जी प्रसाद हैं।
2: रमन।
0: आपका नाम क्या है? हम लोग रमन बोलते हैं, तो आपका नाम क्या है?
2: हमारा नाम रमन प्रसाद।
0: रमन प्रसाद है?
2: हाँ, तो रमन जी आप लोग कहते हैं। हम अपना आधार कार्ड ले आ गए हैं, वोटर कार्ड ला गए।
0: ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है जी।
2: तो आप बताइए कि आप भगवान के नाम पर कोई प्रश्न पूछिए, हम जवाब देंगे आपको।
0: ओके, तो आप कहाँ तक पढ़े हैं रमन जी?
2: हम इंटर पास हैं, बहुत पहले का।
0: अच्छा, अभी क्या करते हैं आप?
2: हम यही बैठे हुए हैं भोपाल में, हमारा लड़का काम करता है बैंक में, लड़की भी काम करती है।
0: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ, पहले प्रश्न के लिए तैयार हैं
0: जी। आप अपने मम्मी पापा का नाम बता देते हैं।
2: उदय बहादुर पापा का नाम है, पिताजी का, और किशोरी देवी माता का नाम है।
0: ओके, तो चलिए रमन जी, आपसे आपका पहला प्रश्न लिया जाए।
2: हाँ लिया जाए।
0: ओके, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: गोपालगंज का पुराना नाम क्या है? गोपालगंज का
1: हरखुआ।
0: कंफर्म है आप?
1: हाँ कंफर्म है, हम बिना एसी का ऑप्शन का ही बताएंगे आपको।
0: हरखुआ गांव में
1: है, गोपालगंज स्टेशन है ना, हरखुआ गांव में है, वहाँ हमारा रिश्तेदारी है।
0: सवाल क्या किए हैं आप, सुने हैं सवाल?
1: नहीं बताइए।
0: सवाल मेरा ये था, गोपालगंज का पुराना नाम क्या है?
1: जो पुराना नाम,
0: हाँ पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन दे या फिर आपको याद है जवाब?
1: हाँ तो ऑप्शन दीजिए। तो
0: ऑप्शन ए है मुबारकपुर, बी है गोपालपुर और सी है गोपाल कृष्णगंज। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोपाल कृष्णगंज है, गोपाल कृष्णगंज की है।
0: सी ऑप्शन सी।
1: मुबारकपुर चाहिए आप, बंक जी
0: मुबारकपुर को लॉक करो। कन्फर्म है?
1: तो क्या कर, हम कभी सुने नहीं है, हम हरखुआ जानते थे।
0: ओके तो मैं लॉक करूँ मुबारकपुर?
1: हाँ लॉक कीजिए।
0: ओके तो चलिए रमन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मुबारकपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप? हाँ। दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है,
1: पहला दिन है थोड़ा हिसाब में सही है, चार पाँच को सही हो जाएगा तो हम सुधार अगला रविवार से।
0: बिहार का सबसे आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, लिया जाए दूसरा प्रश्न?
1: हाँ जी।
0: ओके तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, बिहार का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? ऑप्शन ए है होली, बी है दीपावली, सी है छठ पूजा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छठ पूजा।
0: कन्फर्म है? लॉक कर दो?
1: लॉक कर दी।
0: ओके तो चलिए रमन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ तीसरे प्रश्न के लिए।
0: ओके तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, अशोक किस वंश का शासक था?
1: सम्राट वंश का। मौर्य वंश का।
0: मौर्य वंश। कन्फर्म है?
1: हाँ कन्फर्म है।
0: ओके जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो लिया जाए आपसे आपका चौथा प्रश्न।
1: हाँ जी।
0: ओके तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता।
1: मोहन जोदड़ो का मतलब समझते हैं, किताब में लिखा हुआ है
0: जी, बता दीजिए।
1: मुर्दा हलाया जाता है वहाँ, एक एक फीट पर मुर्दा हलाया हुआ है मरे हुए आदमी को, उसी की जोदड़ो कहते हैं मोहन जोदड़ो।
0: ओके तो लॉक करे आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। ओके तो चलिए रमन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर मोहन जोदड़ो को लॉक करते हैं।
1: लॉक कीजिए।
0: ओके तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: हाँ जी।
0: ओके
1: इसी तरह उस दिन भी पांच हो गया था।
0: ओके
1: अभी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ना।
0: जी जी। आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
1: 20 दिसंबर को।
0: लॉक करूँ?
1: लॉक कीजिए।
0: ओके तो चलिए रमन जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर 10 दिसंबर को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है, सही उत्तर होगा 11 जुलाई ना कि 10 दिसंबर। ओके हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
12: प्रसाद क्लिनिक।
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-21, 8029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
14: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
15: जी धन्यवाद।
14: नाम बता दीजिए।
15: नाम मेरा हो गया गौरव।
14: जी एक बार और बताएं नाम।
15: गौरव कुमार।
14: जी कहाँ से बात कर रहे हैं गौरव जी?
15: जी मैं पटना से बात कर रहा हूँ।
14: जी क्या करते हैं?
15: अभी तो खैर जॉब की तैयारी करते हैं।
14: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
15: ग्रेजुएशन हो गई है।
14: कौन से जॉब का तैयारी कर रहे हैं?
15: SSC रेलवे।
14: चलिए अच्छी बात है।
0: तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में जुड़े हैं?
15: नहीं, ये फर्स्ट टाइम है।
0: तो कहाँ से पता चला आपको हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में?
15: ऐप से। ऐप मैंने ऐप इंस्टॉल किया, उस पर मैं सुनता था तो मुझे पता चला इसके बारे में। एक बार ये कार्यक्रम आया तो मैं सुना था। उसके बाद नंबर यहाँ पे बताया गया था कि संडे को 12 बजे कॉल करना होता, तो मैंने कॉल किया 12 बजे। ट्राई करते करते अभी लगा,
0: बंद रहता है ना नंबर।
15: ट्राई लेकिन बहुत करना पड़ता है, अभी करीब 15 मिनट से ट्राई कर रहे थे तो लगा। बोला जाता है कि 12 बजे से कॉल लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 12 बजे से तो नंबर हमेशा स्विच ऑफ ही आता है, 12:10 से कॉल लगना स्टार्ट होता है।
0: तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
15: ओके,
0: चलिए आपसे आपका पहला प्रश्न ये है।

0: विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई, बी है 12 अक्टूबर और सी है 10 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ग्यारह जुलाई
0: कंफर्म है?
1: हाँ 11 जुलाई कंफर्म।
0: ओके तो लॉक कर दूँ?
1: कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 11 जुलाई बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: तो लॉक करूँ?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए गौरा जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी।
0: ओके आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है,

0: से आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत में पहली बार डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? ऑप्शन ए 1850, बी 1852 और सी 1855। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अठारह सौ पचपन
0: ऑप्शन सी
1: जी।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार लगा दीजिए।
0: लॉक कर दो?
1: हाँ कर दीजिए। कम नहीं लग रहा है इसका सही होने का।
0: ओके, तो चलिए गौरव जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1855 को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 1852 सिंध डाक टिकट।
1: मुझे मालूम था ये गलत होने वाला, 1852 लग रहा।
0: चलिए लोग इस कॉन्टेस्ट में कॉल किए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
3: रेडियो रिंगिंग का कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: नाम बता दीजिए।
2: इमरान अंसारी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं इमरान जी?
2: बहरोपट्टी
0: जी। क्या करते हैं आप?
2: पढ़ाई करते हैं।
0: कहाँ जा रहे हैं आप?
2: क्या
0: आप हैं कहाँ अभी?
2: अभी हम घर पे हैं।
0: तो आप कहीं शांत जगह पे चले जाइए, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। हाँ
2: बोलिए।
0: आप किस क्लास में पढ़ते हैं इमरान?
2: अभी फोर्थ क्लास में।
0: अभी फोर्थ क्लास में है। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: जीएम पब्लिक स्कूल।
0: ओके, आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ हवा चल रही है।
2: हाँ
0: हाँ, तो आप हवा के रोक के तरफ ना बैठिए, हवा के वजह से आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। तो हट जाइए वहाँ से, या फिर दरवाजा बंद कर दीजिए, खिड़की जो भी है उसको बंद कर दीजिए। ओके, इमरान अंसारी जी, आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए? ओके, दिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम कैके सिंह, पिता का नाम मेरा।
0: ओके, तो चलिए इमरान जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन ए होली, बी दीपावली, सी छठ पूजा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्या कहना मैं बोलू?
0: ऑप्शन ए होली, बी दीपावली, सी छठ पूजा।
1: मैम ऑप्शन नंबर ए
0: होली।
1: यस मैम।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, चलिए इमरान जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होली बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा छठ पूजा, ना कि होली। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95 200

0: 2338 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
9: नमस्कार।
8: नमस्कार, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
9: हम शिवुल कुमार बोल रहे हैं।
8: कहाँ से बात कर रहे हैं शिवुल जी?
9: मीरगंज हरखौली मौजे से।
8: जी, क्या करते हैं?
9: वही घर ही पर है, इंटर तक पढ़ाई किए हैं।
8: तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
9: जी
8: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
9: जी,
8: तो चलिए शिवुल जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
9: पापा का नाम राम किशोर भगत, मम्मी का नाम मालती देवी।
8: ओके, तो चलिए शिवुल जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑप्शन ए समुद्री पौधे, बी अमेजन जंगल, सी हिमालय जंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर बी होगा,
0: अमेजन जंगल।
1: सी क्या बोले हैं?
0: हिमालय जंगल।
1: हिमालय को लॉक कीजिए, हिमालय को।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है, लेकिन लॉक के सहारे चल रहे हैं।
0: ओके, चलिए सिबुल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा समुद्री पौधे, ना कि हिमालय जंगल। हेलो, क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
2: हेलो,
0: ये रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: विमलेश्वर महेंद्र
0: जी, क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: हमारा भी बढ़िया है। क्या करते हैं विमलेश जी?
2: पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: 12th में।
0: जी, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
2: अभी सोचे नहीं है।
0: ओके, तो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: यस मैम।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम श्रीमती शिवांशी, पिता का नाम प्रीति शर्मा।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
2: यस मैम।
0: ओके, तो विमेश जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत
1: है, भारतीय रिजर्व बैंक
0: यही है, कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: तो लॉक कर दूं ना?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए विमलेश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑप्शन ए है समुद्री पौधे, ऑप्शन बी है अमेजन जंगल और ऑप्शन सी है हिमालय जंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अमेजन जंगल को फिक्स,
0: अमेजन जंगल को फिक्स करें।
1: यस,
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: तो लॉक कर दूं ना?
1: यस।
0: तो चलिए विमलेश जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अमेजन जंगल को फिक्स करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा समुद्री पौधे, ना कि अमेजन जंगल। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: मैं रुद्र शिवाज बोल रहा हूँ।
0: जी क्या करते हो रुद्र?
2: पढ़ाई।
0: किस क्लास में पढ़ते हो?
2: फोर
0: में।
2: हाँ।
0: ओके, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप?
2: और सैनिक माइंड।
0: ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
2: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत है।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आपके फोर क्लास में संस्कृत है?
2: हाँ।
0: तो चलिए रुद्र जी, आप क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हेलो,
0: आप कहाँ हैं? पहले आप वहाँ से हटिए और हट के जाके कहीं बैठिए अच्छे जगह पे, जहाँ हवा की आवाज ना आए। आप कहाँ पे बैठे हैं?
2: अभी तो बरंडा में बैठा हूँ।
0: हाँ, तो बरंडा में हवा आ रहा है ना सामने से?
2: हाँ।
0: हाँ, तो हवा के पास से हट जाइए। हवा आ रहा है तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है?
2: ठीक है,
0: ठीक है। और आप वहाँ जाके बैठिए जहाँ घर में कोई भी ना हो, अकेले शांत जगह पे, ठीक है?
2: तो फिर ऊपर वाले कमरे में चलता हूँ।
0: ओके,
2: आ गया।
0: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए रुद्र।
2: मम्मी का नाम है अनुपमा कुमार जी और पापा का नाम है रवि श्रीवास्तव।
0: ओके, तो रुद्र जी लिया जाए आपसे आपका आज का पहला प्रश्न।
2: ठीक है।
0: ओके, तो आपसे आपका पहला प्रश्न ये है रुद्र,

0: हमें दिन में रोशनी कौन देता है? ऑप्शन ए चांद, बी सूरज, सी बिजली। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन फिर दोहराइएगा।
0: ऑप्शन ए चांद, बी सूरज, सी बिजली।
1: ऑप्शन बी सूरज।
0: कन्फर्म है आप?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बी सूरज बिल्कुल सही है। तो आप तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, सभी फलों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केला, बी सेब, सी आम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर सी।
0: कन्फर्म है आप? लॉक करूं?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। लिया जाए आपसे आपका तीसरा प्रश्न।
1: ठीक है,
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए, हाँ बोलिए।
1: ऑप्शन की जरूरत नहीं है, टाइगर है।
0: टाइगर है?
1: हाँ।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, बिहार का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? ऑप्शन ए है होली, बी है दीपावली, सी है छठ पूजा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर सी छठ पूजा।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक करूं?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी छठ पूजा बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, बिहार का कौन सा फल बहुत प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लीची, बी आम, सी केला। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लीची।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: ओके, तो लॉक कर दूँ?
1: हाँ।
0: तो चलिए रुद्र जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और बता दूं कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, गोपालगंज का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन दो।
1: हाँ।
0: ऑप्शन ए है गोपाल कृष्णगंज, बी है गोपालपुर और सी है मुबारकपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोपालपुर।
0: ऑप्शन बी।
1: हाँ।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक करूं?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी गोपालपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा मुबारकपुर, ना कि गोपालपुर। ठीक है?
1: ठीक है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे को फिर कोशिश करिएगा।
1: ठीक है,
0: ओके।
2: तो ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
12: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
13: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
12: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
13: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
12: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
13: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
11: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
12: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त RJ सोनी।
14: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
2: आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
14: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
2: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
14: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
2: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
14: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
2: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
14: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
2: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
14: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
2: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
14: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
2: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
14: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
2: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
14: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है। बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
2: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
14: हाँ हाँ बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गांव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
2: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
14: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
2: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
14: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
2: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
14: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
2: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था। ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
14: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
2: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
14: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल। अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
2: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
14: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
2: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुँचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
14: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
2: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में सेहत से ही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
15: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
16: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
17: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
18: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
17: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
18: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञ
3: विशेषज्ञों द्वारा।
17: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
17: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
19: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
20: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
21: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
17: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
22: ठक ठक।
23: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा, मिला ही नहीं
23: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
22: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
23: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
22: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: ओ मेरी सासू की भर ले पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो।
2: ए सेठानी, नीर बनन चलेगी?
1: आज ना जाऊंगा ना, गई तो पूरी बनठन कर जाऊंगी।
0: तेरे के न्यू जान में बिजली पड़े है, तू के नहरिए जागी, नुए चली जा।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
8: ये कहानी है एक अतुलनीय पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की, ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ। कहानी करगिल की।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरती ये सड़क पहुंचती है सरहद पर बसे एक शहर में। सुरु नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1,000 किलोमीटर से भी दूर मौजूद इस छोटे से शहर का नाम है करगिल। जी हाँ, वही करगिल जिसका नाम सुनते ही जहन में खास तस्वीर उभर आती है। तस्वीर एक ऐसे युद्ध की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

0: आज यहाँ न गोलियों की गूंज है न युद्ध के निशान। सरहद पर होने की वजह से सेना की मौजूदगी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन बाजारों में वैसी ही हलचल है जैसी दूसरे शहरों में होती है। वक्त के साथ जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हवा में लहराता ये तिरंगा अब भी सुनाता है करगिल की वो कहानी जो भारतीय सेना के वीरों ने अपने लहू से लिखी थी। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला हाईवे हो या यहां मौजूद चोटियां, ये सब करगिल की कहानी का अहम हिस्सा है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ी चोटी कभी दुश्मनों के कब्जे में थी, लेकिन जब भारतीय सेना के जवानों ने इस चोटी पर तिरंगा लहराया तो ये तस्वीरें यादगार बन गईं। करगिल के चारों तरफ मौजूद हर चोटी की ऐसी ही कहानी है।
1: 26 जुलाई 1999, ये वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इसी दिन करगिल की जंग खत्म हुई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि उनके लिए जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया था। ये भारत और पाकिस्तान की चौथी लड़ाई थी। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आ रहा है, लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने किया सबसे बड़ा विश्वासघात।

0: my message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together, let us make a new beginning.
1: इस संदेश के साथ शुरू हुआ साल 1999, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत की अपील की। भारत पाकिस्तान की सीमा पर घट रही इस ऐतिहासिक घटना पर पूरी दुनिया की नजर थी। लाहौर में पाकिस्तान ने जिस गर्मजोशी से भारत की दोस्ती का हाथ थामा, भारत ने उतनी ही आत्मीयता से पाकिस्तान को गले लगाया। दिल्ली से लाहौर तक जाने वाली ये बस न सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों को जोड़ रही थी, बल्कि उनके बीच भरोसे की एक नई कहानी लिख रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह वादा किया था कि उस साल के अंत तक दोनों मुल्क मिल बैठकर कश्मीर मसले का हल निकाल लेंगे।

0: भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
0: कहानी करगिल की, अमन, चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में ये सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
10: 1999 की करगिल जंग की शुरुआत बटालिक सेक्टर से हुई थी। इस समय हम बटालिक सेक्टर में हैं और मेरे ठीक पीछे पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर का गांव है। लेकिन जो जंग लड़ी गई थी वो इन पहाड़ियों के ऊपर लड़ी गई थी। जब बटालिक के एक शख्स ने अपनी भेड़ बकरियां लेके ऊपर इस पहाड़ की तरफ गए थे, तो यहाँ पे उनको पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए थे, जिसकी खबर बाद में उन्होंने मई महीने में ही सेना को दी थी। यानी जो पहले घुसपैठिए देखे गए थे करगिल जंग में, वो इन्हीं पहाड़ियों में दिखे थे।
0: बटालिक सेक्टर के इसी गरकुन गांव के कुछ गडेरियों ने सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। उनके मुताबिक पठान सूट पहने कुछ लोग बंकर खोद रहे थे। इस खबर के बाद सेना की कुछ गश्ती टुकड़ियों को भेजा गया, लेकिन भारत को तब यह अंदाजा नहीं था कि जिन्हें वो घुसपैठिया समझ रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं। पाकिस्तान के धोखे का पता तब चला जब कैप्टन सौरभ गालिया की पेट्रोलिंग टीम लापता हो गई।
11: ये जो पहले पहले जो खबर इन लोगों को मिली यहाँ पर लोकल फॉर्मेशंस को, यूनिट्स को, तो उन्होंने ये समझा कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे।

0: लोकल फॉर्मेशन ने समझा कि हम इनको निकाल फेंकेंगे और इनके पास ज़्यादा हथियार नहीं होंगे। जब ये असेसमेंट को चेंज किया गया, जब हमको खुद आर्मी को लगा के नहीं ये घुसपैठिए नहीं है, ये तो रेगुलर आर्मी के लोग हैं, तो उस वक्त हमको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स सब बदलनी पड़ी।
1: जब तक भारत को पता चल पाता तब तक पाकिस्तान ने भारत की करीब 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने उन चौकियों पर कब्जा किया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में वापस जाया करती थी। लेकिन 1999 में भारतीय सेना की उन चौकियों पर जाने से पहले ही पाकिस्तानी फौज ने उन चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जाहिर है इसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी तैयारी की होगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या फरवरी 1999 में जब नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी से लाहौर में मिल रहे थे तो क्या उन्हें इस घुसपैठ की जानकारी थी।
2: नवाज शरीफ खुद ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की साजिश की भनक भी नहीं थी। खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग करते हुए शरीफ ने यहां तक कह डाला कि उन्हें तो अटल बिहारी वाजपेयी के फोन से मालूम चला कि पाकिस्तानी फौज भारत में घुस चुकी है।
3: मेरे भाई मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला किया और उस फौजी हमले का मुझे इल्म नहीं था। मैंने उसका नोटिस लिया और नोटिस मैंने तब लिया जब वाजपेयी साहब का मुझे टेलीफोन आया मुझे कहने के नवाज शरीफ साहब ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ। मैं तो थोड़े दिन पहले आपके पाकिस्तान से होके आया हूँ, इतना अच्छा जज्बा लेके मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो मैंने कहा क्या हुआ वाजपेयी साहब? कहने आपको मालूम नहीं क्या हुआ है, आपकी फौज ने हमारी फौज पे हमला कर दिया। मैंने मुशर्रफ साहब से बात की और फिर हकायक जो वाजपेयी साहब कह रहे थे उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक निकले और फिर मैंने कहा कि आपने ये सब कुछ क्या किया।
2: परवेज मुशर्रफ जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक 1998 में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही मुशर्रफ ने भारत पर हमले की योजना बना ली थी। नवाज शरीफ को इस घुसपैठ के बारे में कितना इल्म था इस सच का पता तो नहीं चल सका, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि करगिल का मास्टरमाइंड कौन था।
4: अनऑक्युपाइड एरिया में इंडिया सियाचिन में आ गया, यहाँ हम चले गए, ये हमें और हमने मैं आई से विद कॉन्फिडेंस हमने हिंदुस्तानी फोर्स को गले से पकड़ लिया और मैं रिपीट कर रहा हूं उनको गले से पकड़ लिया क्योंकि हम उन जगहों में चले गए जहां उनकी जो मेन आर्टरी है जो श्रीनगर से द्रास कारगिल और लद्दाख ले जाती है उसको हम डोमिनेट कर गए। उस पे गाड़ी नहीं चल सकती थी अगर हम ना चाहते।
2: इससे पहले की तीन लड़ाइयों में भारत से मुंह की खाने के बाद भी 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की। उसकी सबसे बड़ी वजह थी 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट। उस साल दोनों ही मुल्क एटमी हथियारों से लैस हो चुके थे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान एटमी हथियारों का डर दिखाकर ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव डाला जा सके।
5: इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में एक ह्यूबरिस की स्थिति आई कि साहब अब तो हम एटमी ताकत बन गए हैं, भारतवर्ष हिम्मत नहीं करेगा अगर हम कोई प्रोवोकेशन करते हैं सब कन्वेंशनल दर्जे पे, तो भारत में हिम्मत नहीं होगी कि उसका वो जवाबी कार्रवाई कर सके। और इसी के चलते उन्होंने कारगिल का युद्ध जो है छेड़ दिया था।
2: जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज, S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: कहानी करगिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना। मुशर्रफ ने बेहद खुफिया तरीके से यह साजिश रची। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक करगिल में घुसपैठ के सीक्रेट ऑपरेशन में मुख्य तौर पर पाकिस्तानी सेना के 4 ऑफिसर शामिल थे।
12: आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, कमांडो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, हेड ऑफ कश्मीर, जिहाद, ये वो सारा कुछ। ISI में जब वो थे तो अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए। जनरल महमूद, कोर कमांडर, 10 कोर, और हमारा फॉर्मर एम्बेसडर टू अमेरिका ब्रिगेडियर जावेद हसन, इंचार्ज ऑफ नॉर्दर्न इन्फेंट्री फोर्स कमांड, नॉर्दर्न इन्फेंट्री, जो कि इन इलाकों के, ये थे द 4 पीपल हु कंसीव्ड द गैंग ऑफ 4 अक्टूबर नवंबर 98। अभी बस डिप्लोमेसी शुरू भी नहीं हुई थी तो इन्होंने फैसला किया कि कुछ करते हैं, देखते हैं। उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर कुछ अग्रेसिव शेलिंग हो रही है, इंडिया के कुछ प्लान्स बन रहे हैं, कोई और ना कुछ सीज कर ले LOC के ऊपर। तो इन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि जी, क्योंकि वो इंचार्ज थे, कि आप जाके चेकआउट तो करें वहां इंडिया के क्या इरादे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जब ब्रिगेडियर साहब गए उस इलाके में रेकी करने, तो देखा वहां तो बंदा ना बंदे की जात, थोड़ा और आगे गए तो बंदा ना बंदे की जात। सोचे कोई तो रास्ता खुला है, तो है ही कुछ नहीं, ये तो ऐसी वी कैन वॉक इन, पता ही नहीं चलना किसी को। वहां से ये प्लान बना।
2: मुशर्रफ के इस प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। नजम सेठी के मुताबिक 1999 के जनवरी फरवरी महीने में मुजाहिदीनों की शक्ल में पाकिस्तान के करीब 200 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल को लांग कर करगिल की सुनसान पहाड़ियों में घुस गए। धीरे धीरे इन सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और मार्च अप्रैल तक उन्होंने भारत की 140 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट में रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में लिखा है कि हमले से पहले परवेज मुशर्रफ खुद LOC क्रॉस करके भारतीय नियंत्रण रेखा में 11 किलोमीटर अंदर तक गए और वहां एक रात भी गुजारी।
13: करगिल की लड़ाई का ये पहला चरण था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यानी NLI के फौजी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन ले चुके थे, लेकिन भारत को इसकी खबर तक नहीं थी। करगिल, द्रास और बडाली सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां करीब 16,000 से 18,000 फीट तक की हैं, और यहां पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के सीधे निशाने पर था नेशनल हाईवे नंबर 1A, यानी वो रास्ता जो कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। पाकिस्तान की योजना ये थी कि इस हाईवे पर लगातार फायरिंग कर लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काट दिया जाए।
2: लद्दाख, जम्मू कश्मीर का सबसे शांत इलाका। लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का पहला लक्ष्य था। इसी रणनीति के तहत करगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक नेशनल हाईवे पर जबरदस्त गोले बरसा रहे थे।
14: उनका इरादा मेरे ख्याल से ये भी था कि एक बार अगर श्रीनगर से लद्दाख का रोड कम्युनिकेशन को काट दिया जाए तो उसके बाद वो शायद सियाचिन मुद्दे के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। और उसके बाद भारत को एक कमजोर स्थिति से फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी।
2: शुरुआत में भारत यही समझता रहा कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात के सबूत मिलने लगे कि आतंकवादियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना गोले बरसा रही है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार महाविनाशक एटॉमिक हथियारों से लैस दो देश युद्ध के मैदान में आमने सामने थे।
15: इस समय देश के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए।
2: भारत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ऐसा जवाब देना था जिससे पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल उसके पक्ष में रहे। यही वजह थी कि 24 मई को CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन सेना को किसी भी हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस न करने की हिदायत दी।
5: बहुत लोग चाहते थे कि हम पलटवार करें, लाइन ऑफ कंट्रोल को जाके पार करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला था LC ना पार करने का, ये बहुत समझदार फैसला था, क्योंकि इससे कोई विदेशी ताकत इसमें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते तो ये इंटरनेशनल स्थिति बन जाती, UN उसमें बीच में टपक पड़ता, अमेरिका दबाव डालता कि लड़ाई बंद करो, मैक्सिमम हम 7-8-10 दिन 15 दिन तक लड़ाई लड़ सकते थे। जबकि ऐसे पहाड़ों पे हमारा अंदाजा था कि 2-2.5-3 महीने लग जाएंगे उनके पांव उखाड़ने में, तो इसलिए अगर हमने लाइन पार की होती, हमने दबाव पड़ता, 15 दिन में हमको खत्म करना पड़ता और काफी सारा इलाका उसके हाथ में रह जाता ऐसे अहम जगह में।
15: शांति और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति में राष्ट्र की शक्ति तैयार होती है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है, शांति में जीवन की रक्षा होती है, विकास होता है, लेकिन जब शांति खतरे में पड़ जाए दूसरों के व्यवहार के कारण, तो फिर शक्ति से काम लेना पड़ता है।
13: युद्ध के इतिहास में करगिल की लड़ाई को सबसे मुश्किल लड़ाइयों में गिना जाता है, जहां दुश्मन 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर बंकर में छुपा बैठा था और उनसे मुकाबला करने वालों को हमला करने वालों का नीचे से जवाब देना था। इसलिए भारत रणनीतिक तौर पर कमजोर स्थिति में था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी हमलावरों की संख्या करीब 5,000 थी और उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को करीब 30,000 जवानों को भेजना पड़ा था।
2: भारतीय सेना की मुश्किल ये थी कि जिस हाईवे को वो अपने सप्लाई रूट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा था। इसलिए भारत ने सबसे पहले उन चोटियों को निशाना बनाने की योजना बनाई जो सीधे हाईवे के सामने थी, यानी तोलोलिंग और टाइगर हिल्स। भारत की जवाबी कार्रवाई के इस पहले चरण में सबसे अहम भूमिका निभाई बोफोर्स गन ने। कुछ साल पहले राजनीति के मैदान में बदनाम हो चुकी बोफोर्स गनों ने करगिल के मैदान में अपना दम दिखाया। जमीन पर बोफोर्स के गोले तो आसमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाना शुरू किया।
5: लड़ाई के मैदान में इसने अपना पूरा जौहर दिखाया और जैसे मैंने बताया कि इस ऊंची पहाड़ी चोटियों पर अगर हम दुश्मन को हिला पाए तो सबसे ज्यादा उसमें भूमिका थी हमारी बोफोर तोपों की और हमारे इन्फेंट्री के सिपाहियों की हिमाकत और शुजात की। और ये बोफोर तोपें हमने बताया हर इन्फेंट्री पलटन के अटैक के लिए हमने 100 गन वहां पे पहुंचवाई थी और जो ग्राड रॉकेट लॉन्चर्स थे वो वहां पहुंचाए ताकि दुश्मन को हिला लिया जाए हमले के पहले और तभी दुश्मन के पांव उखड़े, नहीं तो उस हाइट से उसको निकालना असंभव था।
13: करगिल की कहानी बिना बोफोर्स के पूरी नहीं होती। 155 मिलीमीटर की होविट्जर गन का बैरल करीब 70 डिग्री तक घूम सकता है, यानी इसका गोला ऊंची से ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच सकता है। करीब 40 किलोमीटर की रेंज वाली इन गनों ने ऊंची पहाड़ियों पर बने दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर दिया।
2: 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला शुरू किया। हालांकि दुश्मन की सही पोजीशन पता न होने की वजह से वायुसेना को शुरुआती झटके लगे। 27 मई को MiG-27 तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। सहायता के लिए बढ़ा दूसरा MiG-21 विमान पाकिस्तानी मिसाइल के निशाने पर आ गया। MiG-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को युद्ध बंदी बना लिया गया, जबकि मिसाइल के निशाने पर आए विमान MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पाकिस्तानियों ने बर्बरता से मार डाला।
16: All of you here will share my sadness that on first report and preliminary inspection of the body we find bullet wounds. Now the body is being taken for post-mortem, and when we have the full report of the post-mortem, we shall present it to you.
2: शुरुआती झटकों के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज युद्ध में शामिल हो रहे थे। इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। इसने पाकिस्तानी F-16 विमान को भारतीय सीमा से दूर रहने पर मजबूर किया, जबकि MiG-27, MiG-21 और Mirage-2000 विमान जमीनी निशाना ढूंढते थे। भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की किसी भी वायुसेना ने नहीं किया था। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छुपे पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ।
17: Fortunately, by a system that we had adopted in Western Air Command, the enemy was convinced that we are ready for the air battle, willing for the air battle. आप आओ, हम आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, and we are waiting for it. वो नहीं आया।
2: इसके साथ भारत ने जल्द ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी के पुख्ता सबूत दे दिए।
18: डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इन दीज इंट्रूजन्स हैव बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट।
2: भारतीय सेना के लिए जमीन पर हालात तब बदले जब तोलोलिंग पर कब्जा हुआ।
19: कोई नाइट 12-13 को टू राजरिफ ने आर्टिलरी की सपोर्ट के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया, और सुबह 13 तारीख को उन्होंने टोलोलिंग के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ा सक्सेस था हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई 2-3 हफ्ते तक कोई हमको सक्सेस नहीं मिल रहा था, और टोलोलिंग एक ऐसा फीचर था जो रोड के ऊपर बड़ी अच्छी तरह डोमिनेशन कर रहा था दुश्मन।
2: टोलोलिंग के बाद भारतीय सेना का मकसद था टाइगर हिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ना। टाइगर हिल को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराने को निकले भारतीय सैनिक अपने साथ रसद की जगह ज्यादा से ज्यादा हथियार ले गए थे। यह इस लड़ाई का सबसे मुश्किल मुकाबला था। इसके लिए भारतीय सेना की 3 बटालियनों ने पाकिस्तानी फौज को 3 तरफ से घेरा। करीब 11 घंटे की जंग के बाद 4 जुलाई को भारतीय जवानों ने टाइगर हिल पर भी तिरंगा फहरा दिया। यह इस जंग की सबसे बड़ी जीत थी।
20: सुनिए सुनिए सुनिए,
21: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
20: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
21: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
20: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
23: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
22: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
23: बिल्कुल माया क्लासिकल में पीडीएफ, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
0: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
24: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करें खरीदारी।
4: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
23: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 85070-32042 पे।
2: कहानी करगिल की। पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने कई मोर्चे पर जंग छेड़ दी थी। राजनयिक एक तरफ काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ रोज दिल्ली में वायुसेना, थल सेना और विदेश विभाग के प्रवक्ता प्रेस ब्रीफिंग करते थे। टेलीविजन के जरिए करगिल घर घर तक पहुंच रहा था।
25: What you heard right behind...

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से नशा मुक्त भारत अभियान को और गति देने की अपील की। प्रदेश भर की पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन, विकास योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, उर्वरक और बीज की बिक्री व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। और नेपाल की बाढ़ त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 768 हुई, राहत और बचाव कार्य में भारत कर रहा है हर संभव सहायता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नशे की लत से केवल एक व्यक्ति पर ही दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत अभियान को और गति देने की अपील की।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: श्री मोदी ने मिशन शक्ति सेट का जिक्र करते हुए कहा कि इस पहल से देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: मन की बात में श्री मोदी ने आने वाले त्योहारों के दौरान लोगों से वोकल फॉर लोकल के आग्रह को आगे बढ़ाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि कुछ दिनों बाद भारत में जन्माष्टमी और विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत का आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बने उत्पादों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित सभागार में प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर राज्य में भी युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को गति दी जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि नशा मुक्त युवा ही सशक्त बिहार और विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकता है।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत। उन्होंने नशा की क्यों चर्चा की, इसलिए चर्चा की कि नशे के आदि हो रहे हैं हमारे युवा। इन्होंने संदेश दिया कि नशा मुक्त युवा बनेगा तभी नशा मुक्त भारत बनेगा, और बिहार की सरकार भी लगातार कार्रवाई कर रही है।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज गया जी के रामशिला पहाड़ के समीप स्थित सामुदायिक भवन में प्रधानमंत्री श्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मन की बात देश के प्रधानमंत्री और आम नागरिकों के बीच संवाद का एक प्रभावी और सशक्त माध्यम बन गया है। प्रदेश भर के विभिन्न पंचायतों में आज पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। इसके तहत ग्राम सभा में ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि इस दौरान ग्रामीणों में खास उत्साह दिखा। नवादा जिले के विभिन्न पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सारण जिले की 318 पंचायतों में सामाजिक रूप से सुरक्षित एवं न्यायसंगत पंचायत थीम पर जन चर्चा आयोजित की गई। जहानाबाद के सभी 7 प्रखंडों की पंचायतों में अति कुपोषित बच्चों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। अन्य जिलों की पंचायतों में भी ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: 90. समाचारों में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त उर्वरक और बीज समय पर सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक की बिक्री व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि इसके लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन सिस्टम FSAS के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गई है। श्री सिन्हा ने बताया कि वैशाली और शेखपुरा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फार्मर आईडी के आधार पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसे चरणबद्ध ढंग से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। नेपाल की बाढ़ में मृतकों की संख्या 768 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आपदा के पांचवें दिन बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा।
1: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: भारत बाढ़ प्रभावित नेपाल में राहत और बचाव कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि त्रासदी के इस समय में भारत अपने मित्र देश को अकेले नहीं छोड़ सकता। नेपाल के विभिन्न भागों के साथ ही प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश के कारण गंडक, बागमती, कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में बढ़ा है, जबकि राज्य के अन्य स्थानों पर या तो इसमें कमी आई है या स्थिर बना हुआ है। इधर गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में और कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान को पार कर गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम चंपारण, गोपालगंज समेत विभिन्न जिलों में गंडक नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन तटबंधों की निगरानी में जुटा हुआ है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बराज से आज शाम 6 बजे 1,84,000 से अधिक पानी छोड़ा गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा ने आज सीतामढ़ी में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने नेपाल में त्रासदी के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, गया और रोहतास जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों के अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: दिनांक 31 अगस्त को राज्य के समस्त भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के गया एवं नवादा जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मंत्रिमंडल सचिवालय के उर्दू निदेशालय की ओर से पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 2 दिवसीय जश्न उर्दू का आयोजन किया जा रहा है। आज आयोजन के दूसरे दिन मुशायरे में देश भर के प्रसिद्ध शायर और कवि शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कल कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि उर्दू भाषा मोहब्बत और मिठास की भाषा है। उन्होंने कहा कि जश्न उर्दू जैसे कार्यक्रमों से राज्य की गंगा जमनी तहजीब को और मजबूती मिली है। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी अनीस कुमार घायल हो गया, जबकि एक अन्य अपराधी पीयूष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि अपराधियों की ओर से करीब 40 राउंड फायरिंग की गई। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। मौके से एक देसी कट्टा, दो देसी पिस्तौल, एक राइफल, एक देसी कार्बाइन जब्त किया गया है। सीवान के एक निजी होटल में आज भगवान बलभद्र पूजा समारोह का आयोजन किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सारण जिला मुख्यालय छपरा स्थित समाहरणालय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पैरा लीगल वॉलेंटियर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अररिया जिले के गयारी पंचायत में जीविका सुधा बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी विनोद दुहन ने इसका उद्घाटन किया। मधुबनी जिले के बासुपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर 350 ग्राम गांजा के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम चंपारण के बगहा के मंगलपुर से गंडक बराज तक एसएसबी की 21वीं वाहिनी की ओर से आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से नशा मुक्त भारत अभियान को और गति देने की अपील की। प्रदेश भर की पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का किया गया आयोजन। विकास योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, उर्वरक और बीज की बिक्री व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। और नेपाल की बाढ़ त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 768 हुई। राहत और बचाव कार्य में भारत कर रहा है हर संभव सहायता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। ये पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे करगिल की लड़ाई सिर्फ करगिल तक सीमित नहीं रही, पूरा देश इसके साथ जुड़ गया। जबकि पाकिस्तान अपने शहीदों की लाश तक कबूलने से इनकार करता रहा।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
0: कहानी करगिल की, ये पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे करगिल की लड़ाई सिर्फ करगिल तक सीमित नहीं रही, पूरा देश इसके साथ जुड़ गया। जबकि पाकिस्तान अपने शहीदों की लाश तक कबूलने से इनकार करता रहा। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए भारत ने वो किया जो अब तक कभी नहीं हुआ था। 11 जून 1999 को विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाई गई।
11: उनसे बात तो नहीं हुई कोई, कल मुलाकात वगैरह हुई कोई? कल सर हुई शाम को, तो वो ब्रीफिंग हमने की जो मियां साहब के साथ वही फोरम था, जो फुल फोरम था, पहले जहां हमने ब्रीफिंग की थी।
12: और उधरी हुई जमशेद के पास?
11: नहीं, मियां साहब के दफ्तर में।
12: अच्छा अच्छा, उधर
0: टेप में आवाज पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के बीच की थी। मुशर्रफ चीन में थे और अजीज इस्लामाबाद में। करगिल में पाकिस्तान की सेना का दम बहुत जल्दी फूलने लगा था। हालात बिगड़ते देख नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया नवाज शरीफ हवाई हमलों को रुकवाना चाहते थे।
13: कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे श्रीनगर में टेलीफोन किया था, बातचीत की थी और वो यही कहते रहे कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान इस मामले को ठंडा करना चाहता है। हमने कहा ये बताइए ये मामला शुरू कैसे हुआ। हम तो दोस्ती का पैगाम लेकर लाहौर गए थे और लाहौर की सड़क कारगिल में चली जाएगी ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कारगिल में आपने हमला कर दिया। कल भी उन्होंने जब हम गए हमारा दल गया तो उन्होंने तोपों से सलामी दी, एक के बाद एक गोले दागे। किस लिए? गोलों से हमारा देश दबने वाला नहीं है, हमारे जवान गोलों से झुकने वाले नहीं।
0: भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान मदद के लिए अमेरिका के पास पहुंच गया, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि पहले पाकिस्तान करगिल से निकले और लाहौर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को परास्त कर चुका भारत कूटनीति के मैदान में भी भारी पड़ रहा था।
14: वर्ल्ड ओपिनियन जो था दुनिया की तरफ से ये बात साफ थी कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से खुराफात हुई है और भारत जो भी कर रहा है, भारत ना सिर्फ भारत ने बहुत संयम बरता कि उस लड़ाई को और आगे ना बढ़ने दिया, बट सिर्फ अपने इलाके को खाली कराने के लिए युद्ध किया जिसके लिए हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो उस हालात में दुनिया को भारत की छवि जो थी एक बहुत संयम वाले देश की, एक सोच समझ के कार्रवाई करने वाले देश की और ऐसा देश के जो अपने हितों की रक्षा के लिए जो उसके जायज हक है सिर्फ उन्हीं के लिए कार्रवाई करेगा, ना कि दूसरे देश की किसी इलाके ऊपर नजर रखेगा।
15: ऑपरेशन विजय इज गोइंग टू बी ए ग्रेट विजय।
0: करगिल की दुर्गम और ऊंची चोटियों में भारतीय जवानों ने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया उसी का नतीजा था एक शानदार जीत। लेकिन इस जीत के साथ भारत के लिए कई सबक भी थे। दुश्मन जिस तरह भारतीय सीमा में घुसकर बैठ गया था उसे भारत की खुफिया तंत्र की नाकामी माना गया। इस लड़ाई में भारत के 527 वीर शहीद हुए और 1000 से भी ज्यादा घायल हुए। भारत आज भी करगिल में शहीद हुए अपने जवानों को श्रद्धांजलि देता है, जबकि पाकिस्तान ने करीब 11 साल बाद अपने 453 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली। हालांकि नवाज शरीफ के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए थे। 453 से 4000 के आंकड़ों के बीच उलझा पाकिस्तान, क्या करगिल से कुछ सीख ले पाया? शायद नहीं।
16: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
17: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
18: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
17: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
18: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
17: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
19: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
20: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
19: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
20: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
19: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
21: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
21: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
21: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
22: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
23: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
24: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गली के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
4: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।

0: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: All right.

0: समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
4: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
4: PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। PM स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
4: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में PM सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
5: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
12: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
12: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
12: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
14: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
13: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
14: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर।

0: DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। खाड़ी नदी से अतिक्रमण हटाने को लेकर चलेगा अभियान, सेफ्टी टैंक हादसे पर जांच कमेटी का हुआ गठन, जिले के 2 SDPO का हुआ एक साथ तबादला, ट्रैफिक चालान पर अब मिलेगा 50% तक छूट, चोरी कांड में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जिला स्तर पर गठित गंगा सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले में नदियों एवं जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने तथा जल प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को पर्यावरण एवं जल संरक्षण के प्रति गंभीरता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में विशेष रूप से पालगंज शहर से होकर गुजरने वाली छाड़ी नदी की स्थिति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने छाड़ी नदी के किनारे एवं नदी क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में विशेष रूप से गोपालगंज क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को छाड़ी नदी की साफ सफाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। नदी में जमा कचरे, गाद और अन्य अवरोधों को हटाने तथा जल प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिया गया। बिहार में बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है। पूरे बिहार के 27 SDPO के स्थानांतरण की चिट्ठी कल देर शाम जारी हुई थी। इसमें गोपालगंज के भी 2 SDPO का नाम है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में सदर 2 और हथुआ के SDPO का स्थानांतरण हो गया। सदर 2 से राजेश कुमार को स्थानांतरित कर उन्हें वेटिंग इन पोस्टिंग के लिए रखा गया है, तो वहीं हथुआ के SDPO आनंद मोहन गुप्ता का स्थानांतरण करते हुए उन्हें सिवान सदर का SDPO बनाया गया है। साथ ही राजेश कुमार को हथुआ का SDPO बनाया गया है, तो वहीं कृपाल चंद जायसवाल को सदर 2 गोपालगंज का SDPO बनाया गया है। सभी अधिकारियों को जल्द ही उनके नव पदस्थापित पद पर योगदान देने के लिए सरकार का निर्देश भी जारी हो गया है। कुचायकोट प्रखंड के सोनही जगदीशपुर में सेफ्टी टैंक के अंदर दम घुटने से 4 मजदूरों की मृत्यु की घटना पर जिला प्रशासन गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। जिला प्रशासन के द्वारा घटना की जाँच कराई जा रही है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अपर आपदा प्रबंधन पदाधिकारी गोपालगंज ने बताया कि इस घटना को लेकर गैर प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सामूहिक दुर्घटना की श्रेणी में यह आता है। ऐसे में मृतकों के परिजनों को अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 290-1 अप्राथमिकी दर्ज करते हुए इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक चालान के निपटारे का सुनहरा मौका एक बार फिर से लोगों को मिलने जा रहा है। 12 सितंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिन पुराने यातायात चालान पर 50% तक की छूट मिलेगी और छूट के साथ ही निपटारा किया जाएगा। गोपालगंज यातायात थाना और न्यायालय परिसर में चालान जमा किया जा सकता है। चालान सेटलमेंट के तहत लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। वाहन मालिक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान पर पहुंचकर चालान का सेटलमेंट करा सकते हैं। यातायात

0: ने इसको लेकर जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया है कि जिनके भी गाड़ी का चालान 90 दिनों के अंदर हुआ है, ऐसे लोग 12 सितंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में 50% ही चालान भरकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। कटिया थाना क्षेत्र के खुदी छापर गांव में एक घर से सोने चांदी के आभूषण चोरी के मामले में पुलिस ने कांड का उद्भेदन किया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि सूचना के सत्यापन के बाद कटिया थाना की पुलिस ने मामले का निरीक्षण शुरू किया था और इसी मामले में पूछताछ तथा आवश्यक जानकारी एकत्रित करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य और FSL की टीम के जांच के बाद इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें सर्वप्रथम अमित चौहान की गिरफ्तारी हुई। उससे पूछताछ के बाद उसने पूरे मामले का खुलासा किया। चोरी किए गए आभूषणों को गांव के ही अमित खरवार पिता राधा कृष्णा खरवार के पास बंधक बनाकर आरोपी ने पैसा लिया था। वहां से गहनों की जब्ती की गई। अमित खरवार उसकी बात से सहमत हुआ और दोनों कटिया बाजार स्थित अजय ठठेरा के पास जाकर सोना चांदी के आभूषणों को बंधक रखने के बाद दोनों ने पैसा उठाया था और अमित खरवार तथा अमित चौहान ने इन चोरी के पैसों का बंदरबांट किया था। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें अमित चौहान जो कटिया के खुदी छापर का रहने वाला है, अमित खरवार भी इसी गांव का रहने वाला है, अजय ठठेरा कटिया बाजार के परमा रमन ठठेरा का पुत्र है और रोहित वर्मा या युगल किशोर वर्मा का पुत्र है और कटिया बाजार में इसकी भी दुकान है। इनके पास से सोने जैसा झुमका, टीका, सोने जैसा नथिया इत्यादि को पुलिस ने जब्त भी किया है और जो गहने इनके द्वारा बेच दिए गए हैं वे भी पुलिस ने जब्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके बाद अब इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में हो रही बारिश के वजह से गंडक नदी के जलस्तर में फिर से एक बार वृद्धि देखी जा रही है। आज शाम 5 बजे तक गंडक नदी में वाल्मीकि नगर बराज से 1,72,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर आई है, जिसको लेकर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिला प्रशासन निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू किया है और प्रशासन की टीम लगातार नदी और तटबंधों की निगरानी भी कर रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने जादवपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुल के पास गंडक नदी से एक नाव को पकड़ा है, जिसके अंदर से 354 लीटर से अधिक विदेशी शराब पुलिस ने जब्त की है। नाव और शराब को जब्त करते हुए इसमें तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से नाव में शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस को भनक लग गई और पुलिस ने मंगलपुर पुल के पास छापेमारी कर इस शराब के बड़े असाइनमेंट को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस के आने से पहले शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में माझा प्रखंड के बंगरा पंचायत में स्थायी लोक अदालत की भूमिका, इसके क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया, इसके फायदे, इसमें दाखिल होने वाले वादों की प्रकृति, सामुदायिक मध्यस्थता, सशक्त युवा एवं सशक्त भारत विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत अस्थायी लोक अदालत की स्थापना गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में की गई है। इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का सुलह और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। अस्थायी लोक अदालत एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जो डाक, तार, टेलीफोन, वायु, सड़क द्वारा यात्रा या सेवा के लिए यातायात सेवा, बिजली, सार्वजनिक माल वाहन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल, औषधालय, बीमा, आवास एवं रियल एस्टेट सेवा, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, ट्रैफिक चालान आदि जैसी जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे का मंच प्रदान करती है। सबसे खास बात यह है कि अदालत का निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। अस्थायी लोक अदालत की स्थापना से गोपालगंज जिला के लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसी तरह से कुचायकोट प्रखंड के मटिहनिया काला पंचायत भवन में भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, इसके रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत कानूनी प्रावधान, कानूनी सहायता के अंतर्गत कोई भी महिला जो किसी विभाग में कार्यरत है और उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामला आता है तो महिला उस विभाग में बने यौन उत्पीड़न कमेटी के समक्ष अपना मामला रख सकती है। कमेटी उन पहलुओं पर उचित निर्णय लेगा और कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। भोरे थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राधा किशुन भगत पिता भुवन भगत साकिन कोरिया थाना भोरे का रहने वाला है। पुलिस ने इस पर पहले से मामला दर्ज किया था। अब इसको गिरफ्तार करने के बाद आज इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थाड़ी नदी से अतिक्रमण हटाने को लेकर चलेगा अभियान। सेफ्टी टैंक हादसे पर जांच कमेटी का हुआ गठन। जिले के 2 SDPO का हुआ एक साथ तबादला। ट्रैफिक चालान पर अब मिलेगा 50% तक छूट। चोरी कांड में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
7: दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई हमको इस घर में, जानता है कोई। पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और ये जो चंद लाइन है आपने सुनी, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये है उस शख्स की लिखी हुई, जिनकी हर एक एक शब्द में मानो प्यार घोल करके परोसते हैं ये हमारे सामने। वो जिन्हें मैं शब्दों का, गानों का, नज्मों का राजा मानती हूँ। नाम है इनका गुलजार साहब। वैसे पैदाइश इनकी गुलजार के नाम से नहीं हुई थी, किस नाम से इनकी पैदाइश हुई थी बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। साथ ही सुनाऊंगी कुछ बढ़िया प्यारे गाने गुलजार साहब के ही लिखे हुए, और कुछ नज्म भी जो कि उन्हीं की आवाज में है। सुनिए जरा।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज जिस शख्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या बताऊं मैं उनके बारे में। इनकी शायरी में जिंदगी होती है, प्यार की खूबसूरती को शब्दों में कैसे संवारा जाए, ये गुलजार साहब से अच्छा कोई नहीं जानता। एक तरफ जहां मेरे और आपके जैसे लोग गुलजार साहब के गानों के, उनके शब्दों के, उनके बोल के, उनके शायरी के इतने बड़े फैन हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या आपको पता है, दो ऐसे लोग थे जो गुलजार साहब की लिखी हुई चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कौन हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग पैदा भी हुए थे इस दुनिया में। ये और कोई नहीं बल्कि गुलजार साहब के ही पिता और भाई थे। बचपन से ही गुलजार साहब, जिनका नाम गुलजार नहीं बल्कि संपूर्ण सिंह कालरा हुआ करता था, बचपन से ही गुलजार साहब को लिखना बहुत पसंद था, लेकिन उनके पिता हमेशा सोचा करते थे कि यूं ही बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा बेटा, और इससे तो अच्छा है कि मैकेनिक का काम कर ले कहीं पर, थोड़े पैसे घर आ जाएंगे। और इसलिए हमेशा गुलजार साहब को कहा करते थे कि तू जो भी लिखता है बिल्कुल बकवास लिखता है, कुछ नहीं होना तेरा, कुछ काम कर ले। लेकिन वहां से कैसे हमारे गुलजार साहब इतने फेमस हो गए, इनफैक्ट संपूर्ण से कैसे गुलजार बने, ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: पहले से क्या लिखा था, एक वीरान जजीरे पर चट्टानों से उतर के जब सूरज गुरूब हो, सुर्खों सुनहरी साहिलों पे तुम मिलो मुझे। पहले से क्या लिखा था, एक वीरान जजीरे पर चट्टानों से उतर के जब सूरज गुरूब हो, सुर्खों सुनहरी साहिलों पे तुम मिलो मुझे। और इस तरह फिसल के गिरो तुम मेरे करीब, जैसे समंदरों ने अभी ला के फेंका हो। ये पहले से नविश्ता था या इत्तफाक था। सूरज के बाद चांद निकलने के वक्फे में, तारीखी जबकि मौत सूंघती है हर तरफ, तुमको था इंतजार के मंजर से मैं हटूं तो खुद को उस गरजते समंदर में फेंक दो। शायद किसी के दर्द विसर्जन को आई थी, और मैं के इस ख्याल से ठहरा रहा वहीं, तुम इस कदर नहीफ बेसहारा सी लगी, ये खौफ था कि तुमको समंदर न खींच ले। उस रात चांद भी तो बहुत देर से उठा, और तुम किताब दर्द के सफ़ों को खोलकर मुझको सुनाती भी रहीं और फाड़ती रहीं। पानी पे दूर दूर तक पुरजे से बिछ गए। रुखसत के वक्त हाथ मिलाते हुए, मगर करवट बदल रहा था कोई दर्द सीने में। आंसू तुम्हारी आंखों में फिर से नविश्ता थे, और इत्तफाक मेरी भी आंखें छलक गई। पहले से क्या नविश्ता है, क्या इत्तफाक है,

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ले आया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। क्या आप जानते हैं, जिस तरह मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि गुलजार साहब के पिता पसंद नहीं किया करते थे कि उनका बेटा यूं ही कुछ किताबों के बीच में घुस करके बैठा रहे, तो उन्होंने अपने बेटे को फोर्स किया था कि वो जाए और जाकर के बाहर जाके कुछ काम वाम लेकर के आए। तो एक लेखक बनने से पहले गुलजार साहब ने बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स की, जिनमें से एक नौकरी मैकेनिक की भी थी। उस दौरान ही यूज्ड टू वर्क एज अ टचअप गाय फॉर कार्स इन अ गैराज। पोएम्स लिखना तो एक हॉबी था उनके लिए, और इसके साथ साथ स्केचिंग और टेनिस में भी इनको काफी रुचि थी। हर रोज सुबह 4:30 बजे उठा करते थे गुलजार साहब, जिससे कि वो अपने दिल की बातें एक कागज के पन्ने पर उतार पाए और उसके बाद जाकर के 2 घंटे के लिए टेनिस का गेम खेल करके आ पाए। 1963 की बात है जब डायरेक्टर बिमल रॉय ने उन्हें पहचाना, उनके लिखने की कला को पहचाना और उन्हें एक ब्रेक दिया, बॉलीवुड में उन्हें एक लेखक बनाया। गुलजार नाम जो है वो भी बिमल रॉय जी के साथ में बैठ करके ही गुलजार साहब ने सोचा कि वो अपने आप को इस नाम से बुलाना चाहेंगे। आपको पता है, डायलॉग्स लिखने के बाद, स्क्रीन प्ले लिखने के बाद, मूवीज को डायरेक्ट करने का भी सोचा हमारे गुलजार साहब ने, लेकिन एक मूवी ऐसी थी जिसके बाद में गुलजार साहब को डिप्रेशन सा हो गया था। कौन सी थी वो मूवी, बात करेंगे उसके बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन अभी सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है, जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपट कर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है। रूह देखी है कभी, या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूं टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं, चौदहवीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। रूह देखी है कभी, जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह 1 बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
4: मैंने

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि एक फिल्म डायरेक्ट की थी गुलजार साहब ने, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। वो फिल्म इनकी आखिरी डायरेक्ट की हुई फिल्म बनी और उस फिल्म का नाम हुतुतु। गुलजार साहब बहुत ही मेजर डिप्रेशन में चले गए थे इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद, लेकिन इसमें से बचाने वाली सिर्फ एक शख्स थी और वो कोई और नहीं बल्कि इनकी बेटी मेघना गुलजार थी। पत्नी के साथ यानी कि राखी जी के साथ तो शादी के कुछ सालों बाद ही इनका रिश्ता टूट गया था। तो जब गुलजार साहब अपने एक बुरे फेज में आए, तब किसी और ने नहीं बल्कि इनकी बेटी ने ही इन्हें संभाला। मेघना जी बताती हैं कि उस समय गुलजार साहब मेघना जी के बाल बनाया करते थे, घंटों बैठ करके अपनी बेटी के बाल संवारा करते थे, और इस एक बाप बेटी के रिश्ते ने ही उन्हें इस डिप्रेशन में और गहरा जाने से बचाए रखा, रोके रखा। आपको बताना चाहूंगी मैं, गुलजार साहब को एक पर्टिकुलर कलर से भी बड़ा प्यार है। कौन सा है वो कलर और क्यों इतना पसंद है उन्हें ये रंग, बताऊंगी कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले गुलजार साहब की ही लिखी हुई कुछ लाइनें एक गजल की सुनाना चाहूंगी। कोई अटका हुआ है पल शायद, वक्त में पड़ गया है बल शायद। कोई अटका हुआ है पल शायद, वक्त में पड़ गया है बल शायद। लब पे आई मेरे गजल शायद, वो अकेले हैं आजकल शायद। दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका कोई नहीं है हल शायद। आ रही है जो छाप कदमों की, खिल रही है कहीं कवल शायद। राख को भी कुरेद कर देखो, अभी जलता हो कोई पल शायद। चांद डूबे तो चांद ही निकले, आपके पास होगा हल शायद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है।

0: अमेरिकन क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। एक रंग है जो कि गुलजार साहब को बेहद पसंद है और वो रंग है सफेद। आज की तारीख में आप गुलजार साहब को सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग के कुर्ते ही पहने हुए देखेंगे। सालों साल हो गए हैं गुलजार साहब ने किसी और रंग को अपने तन पे चढ़ाया नहीं। काफी साल पुरानी बात है, जब गुलजार साहब पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे, इंडिया आए थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इंडिया में ही रहेंगे। तब इस गम के मारे कि दो देश अलग हो गए, एक देश का बंटवारा हो गया, उन्होंने सोचा था कि वो रंग पहनना छोड़ देंगे और सिर्फ सफेद रंग ही पहनेंगे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी बीवी राखी जी का भी ज्यादा चटक मटक वाले रंग के कपड़े पहनना पसंद नहीं हुआ करता था। राखी जी और गुलजार साहब की जब शादी हुई थी तब राखी जी अपने करियर के प्राइम पे थी, टॉप एक्ट्रेस में मानी जाती थी, और गुलजार साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था कि राखी जी काम करे बॉलीवुड में शादी के बाद। तो राखी जी ने काम करना भी छोड़ दिया था। इनफैक्ट कुछ साल बाद ये दोनों सेपरेट भी हो गए थे। आज तक कभी डिवोर्स नहीं लिया, लेकिन एक दूसरे से अलग जरूर हो गए थे, पर फिर भी राखी जी ने गुलजार साहब का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा रखा। ऐसा था इनका प्यार। तो इन्हीं के प्यार के नाम सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। आज फिर सीने में सुलगती हुई वजनी सांसें फटके बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी। आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रमजिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रमजिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रमजिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: संसार से सुनर सिंगार सहज सुहाला, तू जब ताके लुत तो से मोहब्बत हो जाला।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट, कारवा मिनी।
2: सारेगामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ।
3: बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो जरा पास आओ

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
2: जी, मैं मनान कपूरा से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
2: हाँ, आज तो बारिश का मजा लिया आज।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, बारिश हुआ है तो मौसम ठंडा है।
2: आपके तरफ हुआ कि नहीं?
1: हाँ हाँ, मेरे तरफ भी हुआ है, एक घंटा हुआ 9 से 10 बजे के बीच।
2: नहीं तो एक घंटा तो थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि खेत का पट सिंचाई हो गया है थोड़ा। फिर अब धूप निकलेगा तब मजा आएगा।
1: हाँ, इतना से क्या होना है, धूप होगा तो उमस होगा,
2: बहुत मजा। अब कीड़े पतेंगे सब निकलेंगे, सब बहुत तो होगा, कमौरी भी निकलेगा। लेकिन हाँ, राहत मिला है
1: जी,
2: बहुत राहत मिल गया है। इतना राहत, बच्चे सब बाहर निकल के खूब नहा रहे थे।
1: अच्छा लगता है।
2: हाँ, बहुत अच्छा लगता है, हमको तो देख के ही उमंग हो गया है, कितना लड़के मस्ती में सब नहा रहे हैं। तो तब आज मैडम, आज दोस्ताना फिल्म का गाना सुनाइए ना।
1: जी, बता दीजिए कौन सा।
2: वो कितना मुश्किल है पर भूल जाना।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
2: आपको नहीं। पहले पहले सोनी जी को।
1: जी जी।
2: और आपको
1: जी,
2: और आपके जितने भी लोग काम करने वाले हैं लोगों को।
1: अच्छा,
2: हम तो सुनेंगे ही।
1: जी जी,
2: है ना। आप पर रेडियो प्रेमी जितने हैं रिमझिम का, खासकर उन्हीं को, है ना, और उनके साथ ये सब डेलीकेट रहेगा। बोल दीजिएगा कि मन्नान बोले हैं सोनी जी को पहले डेलीकेट रहेगा।
1: जी जी, बिल्कुल रहेगा।
2: हाँ, बोलिएगा, ये काटिएगा नहीं आवाज।
1: नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे।
2: हाँ, ताकि वो भी सोनी जी तो सुनेंगे ना।
1: हाँ,
2: तो सुन ले तो ख्याल आ जाएगा कि हाँ, कोई मन्नान नाम का बोला था कोई। चलिए मेरे सब ठीक है, तब उसी को सुना दीजिए।
1: ओके, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: ओके, थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन 90.4 FM में।
0: नमस्ते
1: नमस्ते, क्या हाल चाल?
0: मैडम जी।
1: हम भी अच्छे हैं।
0: आना हो गया ना?
1: ऐसा हो गया, आपका हो गया
0: जी। तो सोमवार को रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। शुक्रवार को
1: होता तो है।
0: तो 12 बजे फोन लगाए थे, एक बार लगा तो कट गया।
1: अच्छा, नहीं शुक्रवार को भी रिकॉर्डिंग हुआ था।
0: तो सब ठीक है मैडम जी?
1: हाँ, सब ठीक है। आप बताइए।
0: मेरा भी ठीक है।
1: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
0: गाना कौन सुन के सुना दीजिए।
1: ओके, कौन सा सॉन्ग?
0: तो हम

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone kindi bajti hai to kehte hai hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: नमस्ते मैम, कैसी हैं आप?
6: नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
7: बिल्कुल अच्छे हैं। और सब घर परिवार?
6: सब कोई बढ़िया है। आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
7: बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है।
6: अच्छा, नाश्ता हो गया आपका? चलिए बढ़िया है। और बताइए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
7: जी हमें अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुनना है चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तो।
6: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
7: जी सबसे पहले आपको और सभी गोपालगंज जिलावासियों को और सिवान जिलावासियों को, और रेडियो के सबसे बड़े फैन है कुशनियारा मलिक जी है और संद्रा कुशवाहा जी, उनको भी सुनाना चाहते
6: हैं। ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: आपका शुभ नाम?
6: मेरा नाम भारती है। आप भी अपना नाम बताते जाइए ताकि इसमें रहेगा तो अच्छा रहेगा।
7: हमारा नाम है राधे समरसिया, गरतनी सिवान जिला के कबीरपुर गाँव से बतिया। सारा लोग परेशान गर्मी से दिन और।
6: अच्छा जी,
7: ओके, गुड नाइट।

0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मैं सुधनपुर जिला गुना।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: दीदी हमारे यहाँ तो बहुत बेहतरीन बरसात हो रही है, कल रात से बरसात हो रही है, अभी बरसात हो रही है। जी
1: चलिए बढ़िया, मौसम तो ठंडा होगा आपके तरफ।
0: जी जी जी, और नाश्ता पानी हो गया आपका?
1: जी मेरा हो गया, आपका हो गया क्या?
0: हाँ मेरा भी हो गया।
1: और क्या बताइए, कैसे हैं, क्या
0: सुन रहे हैं दीदी? गाने दिन दिन चलाते रहते हैं दिन भर, और क्या करें। और क्या
1: आज कौन सा गाना सुनना है?
0: जी गाना सुनना था अम्मो है जी का।
1: कौन सा गाना?
0: शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी सबसे पहले आपको है, और अपने कजरा की लोधी है, मांगीला चंदेल है, मांगीला काका है, गोपाल हो जाती है सगवा साहब।
1: जी तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: ठीक है, नमस्ते जी।
5: नमस्ते,
6: का हाल बा?
5: हाल तो ठीक बा, अपन बताई।
6: ठीक है बा, मौसम के हाल चाल बताई।
5: आज तो 9 बजे से बारिश भइल है 10 बजे ले। मौसम ठीक बावे
6: हम लोग के तरफ तो पंजाब में बारिश नहीं होता है, कोई होता है, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ता है।
5: अब तो मतलब मानसून आ ही गया है तो हल्का फुल्का बारिश स्टार्ट हो रहा है। अब उधर नहीं होता है क्या कभी?
6: नहीं, कितना दिन से बारिश यहाँ कहाँ हो रहा है।
5: अच्छा, कोई नहीं, इधर से जाएगा उधर भी घूमते घूमते।
6: हाँ, इधर भेजिए।
5: हाँ हाँ, बिल्कुल भेज रहे हैं। और सब बढ़िया है?
6: हाँ बढ़िया है।
5: चलिए बढ़िया होना चाहिए। कौन सा गाना सुनिएगा आज?
6: गाना सुना दीजिए, परदेसियों से नवाखिया मिलाना।
5: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाइएगा भी?
6: हाँ हाँ,
5: बता दीजिए।
6: परमात्मा को, बिजली को, धनजय को, हमारा स्वराज पूजा को, रानी को।
5: जी जी, चलिए बढ़िया है।
6: कभी कभी हम लोग के टाइम नहीं मिलता है, टाइम का भाव से थोड़ा देर से बंद हो जाता है मोबाइल, तो हम लोग सुन नहीं पाते हैं, ऐसे कि हम लोग को मालूम नहीं चलता है कि कितना बजे बजेंगे कितना बजे नहीं बजेंगे। तो
5: 5 से 7 बजता है शाम को और सुबह में 9 से 11 बजता है। तो चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ ग्राम खोरा मनसिंहापुर की चंपारण बिहार से संजय कुमार शाह।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। आप लक्ष्मी, आप कैसी हैं? आपकी पूरी रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
1: जी सब कुछ ठीक है।
0: घर के मौसम बताइए, मौसम के क्या हाल है?
1: मौसम तो अभी सुबह में थोड़ा सा बारिश हुआ है तो अभी ठीक है।
0: अच्छा,
1: आपके तरफ
0: बारिश हुआ
1: है? हाँ,
0: इधर भी वैसा ही है, इधर ठंडा है, मौसम ठीक है, बारिश हुआ है अभी एक घंटा पहले, अभी छूटा है बारिश।
1: चलिए बढ़िया है।
0: 9 से 10 बजे के बीच बारिश हुआ है, खूब झमाझम।
1: जी जी, इधर भी उसी टाइम हुआ।
0: जी जी, चलिए तब हमारे आपके पास और नेपाली तरफ मुझे बारिश के पानी बौछार हुई गया, खेत के लिए बहुत बढ़िया हो गया, लाभदायक हो गया।
1: जी जी,
0: रोपनी अब हो सकता है, सब लोग करेगा। आपके तरफ रोपाई हुआ है कि नहीं अभी?
1: अभी तो मतलब बीज गिरा है तो अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा और 2-4 दिन लगेगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा।
0: तो हो गया है हम लोग के गांव में, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाकी है, अभी कुछ लोग छोटा छोटा भी है, इसलिए
1: शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा बाकी है,
0: इधर भी हो गया। चलिए ठीक है, बढ़िया।
1: कौन सा गाना?
0: हाँ, आज फरमाइश, आज फरमाइश सुना दीजिए, लता मंगेशकर की आवाज है, मेघा रे मेघा, मेघा रे मेघा, ऐसे करके गाना है, वही सुना दीजिए, क्योंकि आज बारिश हुआ है तो पानी की उतरता है, मन की उतरता है, तूने किसको याद किया, इसे करके गाना है।
1: गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट में सबसे पहले आपको रेडियो संपन्न परिवार को और दोस्त में हो गए मामा साहबी जी को, मैंने उत्तम कुमार जी का, मैंने सबको स्वागत की वहाँ से, अर्जुन कुमार कला बैकोर धाम से, नरेश सोनी, नसीदीन खान, दीपक दास, उदय भान ठाकरे, छिंदवाड़ा मापल दे से, राजेंद्र जब भारती, संत लाल गौतम, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्तों, और विशेष करके मोहम्मद सलार अंसारी है मझेलिया को, उनको सुनाते हुए संत लाल गौतम, राजेंद्र जादव भारती को सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो रंजिम सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो मैम, नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: कैसन बानी?
5: हम तो ठीक बानी, रउवा बताई रउवा कैसन बानी?
6: बस ठीक है बानी, आज छुट्टी रहेला ना। आज सोमवार का छुट्टी रहेला।
5: सब और सब का होता है?
6: बस का हुई, अभी नहा धोवा के रउरे रउरे एक खाती हवा खबर न है नहीं होती, तुम कॉल करे के बाद न तो लेट हो जाये।
5: चलिए बढ़िया बा, नाश्ता
6: अभी नहा धोवा के कॉल कर
5: नाश्ता तो कैले ना हो
6: ना अभी कहा।
5: बता दी कौन सा गाना सुने?
6: गाना तो आज खुशबू सिंह के आवाज में सुने के बाद।
5: कौन सा गाना?
6: राजा कहियो मावर खा के मर जाए।
5: अच्छा, और ये गाना क्यों के सुना होंगे बा?
6: बस रौड़ा के सोनी मैम, जितना लोग सोनी सुन ली। सोनी मैम अभी आई कि नहीं?
5: आई है।
6: और सब बढ़िया, पूरा परिवार?
5: सब बढ़िया।
6: चलिए सब ठीक है, सुनाइए।
5: गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
6: सुनाइए, ठीक है, ओके।

0: हेलो हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 FM में।
0: गुड आफ्टरनून,
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: पहचान रहे हैं क्या?
1: जी
0: कैसे पहचान गए आप?
1: आपकी आवाज़ सुने तो पहचान गए।
0: आवाज़ से सुना तो मेरा क्या नाम है?
1: क्या नाम है? गणेश नाम है।
0: अच्छा चलिए ठीक है। और सब बताइए?
1: और सब बढ़िया है।
0: तो बारिश हुआ है?
1: इधर तो बारिश हुआ है, आपके तरफ हुआ या नहीं?
0: मेरे तरफ हुआ है, बाकी बहुत कम बारिश हुआ है।
1: अच्छा हाँ, इधर भी हल्का हल्का हुआ है, मतलब एक घंटा हुआ, थोड़ा थोड़ा मतलब धीमे धीमे हो रहा था।
0: मतलब खेत में बारिश नहीं लगा है पानी।
1: चलिए, जितना नहीं होना था उतना भी हो गया, तो उतना भी राहत दिया है।
0: हाँ इतना भी सांस हो गया है, गर्मी थोड़ा कम है अब इतना ही से। और सब बताइए, खाना ना खा कर आए हैं कि नहीं?
1: हाँ खाना तो खा ही के आते हैं, नहीं खाएंगे तो रहेंगे कैसे।
0: अच्छा कल सुनी दीदी के बर्थडे था, तो आप कुछ मांगे नहीं थी?
1: बर्थडे मना नहीं था, यहाँ मना तो था।
0: वहाँ पे मना है, अपने घर पे नहीं मनाई है?
1: तो घर पे भी मना था, यहाँ भी मना।
0: अच्छा आपको क्या खिलाई थी?
1: केक आया था, केक काटे थे लोग।
0: खाली केक खिलाई थी और कुछ नहीं खिलाई थी?
1: नहीं, मिठाई कुछ दिन पहले ही खिलाई थी हम लोग को, काफी पतली था।
0: अभी आई है क्या सुनी दीदी?
1: हाँ आई है।
0: फिर चलेगा?
1: चलिए
0: ठीक।
1: गाना सुनिएगा, गाना बता दीजिए।
0: गाना सुनना है हम के बरस, हम के बरस यही बजा दीजिए।
1: अच्छा
0: मेरे महबूब के घर जाना है यही।
1: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: डेडिकेट रहेगा आपको, सोनी मैम को, देविया मैम को। पहचान रहे हैं?
1: नहीं हम आए तो वो नहीं थे, बस सोनी जी से मुलाकात।
0: तो सब लोग का डेडिकेट रहेगा, मेरे बहन है करिश्मा, उसका भी डेडिकेट रहेगा। फोन धराए हैं हम, बोल रहे कि दीदी जी में बात करेंगे। बताइए ना, ये कोई बात हुआ?
1: नहीं,
0: ऐसा ही तो फोन नहीं लगता है। आज मेरा व्यवस्था नहीं, कुछ बताया पहले ही कॉल लग गया।
1: अच्छा तुरंत का कॉल कटा हुआ था?
0: अच्छा मतलब आज बीजी जी बताया था, सबसे लग गया था।
1: नहीं तो टाइम भी तो मतलब 12 बजने वाला, इधर थोड़ा कॉल स्लो हो जाता है, उधर एकदम लगातार आता है।
0: इसलिए अब उधर नहीं लगाएंगे, इसी समय लगाएंगे ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, पहचान रहे तो कोई बात नहीं है। और सारा कस्टमर लोग है, देख रहे हैं कि फिर लगा रहे हैं, लग जाएगा तो ठीक है। मेरे बहन बोल रहे हैं कि मैं बात करेंगे।
1: अच्छा जी चलिए ठीक है। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
0: ठीक है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते, क्या हाल चाल?
6: क्या हाल चाल बा?
5: हमारा बढ़िया, आप बताइए।
6: हमारा ठीक बाटे, यार सब ठीक बा ना?
5: हमारा ठीक बा। खाना हो गया का?
6: रात हो गया की ना?
5: हम तो खाना खा के आए नहीं अब घर से, अब एज लेके आए नहीं सन, तो 1-2 बजे के आस पास खानी सन।
6: ठीक है, तो नहीं हम कहाँ से बोलते नहीं?
5: करिश्मा बोल रही है।
6: अच्छा, चिल गल बनी?
5: हाँ, पहचाना तो नहीं।
6: चलिए पहचाने की चाहे। चल गाना सुना बता हमारे।
5: बता दी कौन सा गाना?
6: मिल्खावा सिंह ये कौन सुना दी?
5: अपना पसंद से तब नो।
6: अच्छा, पसंद से सुने?
5: अच्छा, भोजपुरी में तो उतना हम सुन ले नहीं की हमारा बुझेबे ना कर ले रोल
6: बताएंगे। कौन बजा दी चाहे देव भाई कौन बजा दी?
5: अच्छा,
6: भैया फोन करे रहे हम का। ठीक बा,
5: डेडिकेट भी बा।
6: हाँ दीदी के सबसे पहले दरवाजा के रहिए मैम के, अगर बाद हमरा आदि जितना सुनता ही लग है
7: ढेरिंग के से जान पहचान हो गई गई से।
6: ए दीदी मैम से भई रहला सब
5: पूछे नहीं काहे नहीं के बाजत गाना होई में।
7: हां कर सुना तो पूछम ना, मेरे खूब बढ़िया से जानता नहीं।
5: और सब घर में सब क्यों ठीक बानो?
6: हां सब क्यों ठीक है लगवा घर में।
5: हमने के तो जान ठीक बानी को
7: अपना साथी लोग लगे बैठल रही।
5: अच्छा,
6: बारिश होता है?
5: बारिश तो भई रहला 9 से 10 के बीच में।
6: हां ये नहीं भई रहा था, खुलल बटे तो बॉटल बनी सुन दुआ।
5: अच्छा चलो, कहीं तो बैठ के आया, थोड़ा बहुत मस्ती कर लेवे के चाहिए। तो जान पहचान भी होकल जरूरी बाबे, केहू केहू से बात करे की इच्छा होला। गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं डॉक्टर अमोद कुमार ग्राम जिला बोल रहा हूँ
1: जी। क्या हाल चाल है आपका?
0: अच्छा है मैम।
1: मेरा भी अच्छा है।
0: और मौसम है आप उधर का?
1: मेरे यहाँ का मौसम अभी फिलहाल ठीक है।
0: हमारे यहाँ भी बारिश हो रही थी, अभी सुबह में बारिश हुई है।
1: अच्छा, इधर भी हुआ है हल्का हल्का बारिश सुबह में 9 बजे से।
0: जी जी, हमारे यहाँ उस समय ही बारिश हो रही थी 9 बजे करीब। इस समय थोड़ा सा बारिश बंद है, मौसम ऐसा सुहाना बना हुआ है।
1: जी जी, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आप?
0: गाना सुनवा ये तुम्हें देखे मेरी आंखें अमेरिका है।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: बस आपको और पूरे रिंजिम के जितने भी श्रोता है सभी को, रिंजिम और पूरे परिवार सभी को सुना दीजिए।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हाँ हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: हेलो,
3: हाँ जी बोलिए। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका?
2: हाँ ठीक है मैम, अपना सुनाइए।
3: मेरा भी ठीक है।
2: गाना सुना दो।
3: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
2: नदिया के पार का कोई सॉन्ग बजा दीजिए।
3: नदिया के पार का कौन सा सॉन्ग?
2: बबुआ हो बबुआ।
3: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है? बता दीजिए किसको।
2: हमारे वहाँ काम करते हैं हमारे वीरेंद्र जी है, राजू जी है, मनोज जी है, विजय जी है और भी सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी भाई बंधु।
3: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: हम थावर से रामाजी प्रसाद, राजन मार्केट से।
0: जी जी,
1: आज देखो बारिश भइल है कि ना?
0: हाँ हाँ, बारिश से ना भइल है, 9 बजे
1: हाँ भइल है बारिश, नगर पानी गिरल है आज। फिर तो हाउस हो गया, बारिश गिरा बाद फिर बुझाते अंदर से हाउस बा।
0: अभी तो पूरा तरह से धरती गीला नहीं है ना भइल, अभी तो उमस होखबे करी।
1: तो गाना सुना दी।
0: बता दी कौन सा गाना सुने?
1: वायापुर वाया समान कर झूमे जैसे मनवा नाते मोर।
0: अच्छा, और गाना क्यों के सुनाऊं के बा?
1: जितना लोग सुनते सब कुछ सुने, हम सुने, रवा सुने।
0: चले ठीक, और सब ठीक बा ना?
1: हाँ सब ठीक बा।
0: तो फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे 90.4
1: सुनते 5 बजे तो सुनते रहला।
0: हाँ हाँ।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: जी मैडम नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: कमलेश बोल रहे हैं हरक कुमार।
5: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: ठीक है मैडम, आप लोग का आशीर्वाद। अच्छे है मैडम, लेकिन आज काम उम नहीं चल रहा है, ठंडा मौसम है, बारिश हुआ है थोड़ा सा।
5: मौसम तो ठंडा हुआ है।
6: हाँ बहुत ठंडा हुआ है। अच्छा है,
5: तो नाश्ता हो गया है आपका?
6: जी मैडम हो गया है, बैठे हुए हैं, गाना सुनना चाहते हैं।
5: अच्छा बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
6: वो गाना नहीं है, बितवा भूल ना जाना, वही गाना सुनना चाहते।
5: डेडिकेट भी है
6: हमारे साथ में पवन जी है, धनंजय फासी है, उनको सुनाना चाहता हूँ, जितना लोग सुन रहे हैं सब किसी के साथ और आपको भी।
5: अच्छा जी, लगता है कहीं किसी पेड़ के पास बैठे हैं, चिड़ियों की बहुत चहचहाट आ रही है,
6: ठंडा मौसम है, जामुन के पास में बैठे हैं।
5: तो गाना प्ले करते हैं।
6: जी मैडम
5: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: नमस्कार।
5: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत आपका रेडियो रिमझिम 90.4
0: एफएम। मैम
1: नमस्ते। हेलो,
0: क्या हो रहा है मैम?
1: जी कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं?
0: कुछ नहीं मैम, बस बैठे हैं।
1: अच्छा, तो नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ मेरा हो गया। आपका हो गया? मैम गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
0: मैम विदेशी में के गाना सुनना है।
1: कौन सा गाना?
0: काहे करे लो फोन यार,
1: एक बार और बोल दीजिए, आवाज कट रहा है आपका।
0: विदेशी लाल का गाना सुनना है, काहे करे लो फोन यार।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: आपको और सारे, मतलब सारे सुनने वाले सुनता है।
1: अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए अपना।
0: गुड़िया कुमारी।
1: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: मैं मोहम्मद यूसुफ, अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला।
4: कैसे?
3: हाँ, अभी तो मौसम सुबह में पानी इधर हुआ है। मौसम अभी बहुत अच्छा है, इधर सुहावना मौसम है।
4: चलिए अच्छा है।
3: उधर गोपालगंज में?
4: हाँ, इधर भी हुआ है तो ठीक है मौसम अभी।
3: हाँ, मौसम ठंडा है। बड़ी व्यस्त बता रहा है आपका मोबाइल।
4: अच्छा।
3: हाँ, पाकिस्तान, सुनिए ना, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना आसान है, आपके यहाँ फोन लगाना आसान नहीं है।
4: अच्छा।
3: घंटा पेड़ते रहिए तब जाके पकड़ता है।
4: अभी तो कॉल काटा तो तुरंत आपका कॉल आया।
3: हाँ, तो बड़ी देर से लगा रहे थे ना।
4: कॉल ज्यादा ही हो जा रहा है।
3: बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका कस्टमर इतना ना बढ़ गया है, पूरा बहुत लोग जुड़ गए हैं आपके साथ है।
4: जी,
3: आप लोगों का जो आवाज है आपका, और तो बहुत सोनी का बहुत अच्छा आवाज है। आप भारती जी बोल रहे हैं ना?
4: हाँ,
3: तो आप दोनों अभी बेमिसाल हैं।
4: जी, सब आप सबकी कृपा है।
3: हाँ, बहुत सुंदर, बहुत मीठा आवाज आप लोग दोनों आदमी को, हमको समझ में ना आता है कि कौन बोल रहे हैं।
4: अच्छा,
3: सेम एकदम एक आवाज में,
4: कभी कभी हो जाता है।
3: हाँ, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको गाना सुनाइएगा।
4: बता दीजिए।
3: बांसुरिया अब यही पुकारे।
4: अच्छा,
3: अपना मेडिकल के सभी स्टाफ और खास करके आपको और कन्हैया प्रसाद जो फौजी से रिटायर किए हैं, वो आपका हरदम रेडियो सुनते रहते हैं, तो वहाँ करके सुन के हमको बताते हैं दुकान पर।
4: अच्छा।
3: कहते हैं कि आपका गाना, उधर हम व्यस्त हो गए थे कुछ दिन, कह रहे थे कि आपका परमेश्वर नहीं आ रहा है, अब थोड़ा दूसरे काम में लगे हुए हैं, बिजी है, इसलिए नहीं आता, तो बराबर सुन करके वही बताते हैं। हमको तो फुर्सत कम मिलता है, कभी सुन पाते हैं कभी नहीं सुन पाते हैं।
4: सुनता है ना कोई, तो सुनता है ना।
3: हाँ, इसलिए तो आपसे, आप लोगों को अवधि हमको इतना अच्छा लगता है कि हमको, इसलिए हम फोन लगाते हैं आप लोगों को।
4: चलिए,
3: अब सोनी जी और अब फिर आप अभी आ रहे हैं आप।
4: सोनी जी अब अभी तो मतलब जाएंगे लाइव।
3: हाँ, वो लाइफ में रहती हैं। उनका ड्यूटी चेंज हो गया है।
4: चलिए फिर रखते हैं।
3: हाँ, ठीक है ठीक है, गाना सुनवाइएगा।
4: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है मैम, बस आज तो पहला ही कॉल लगता है हमारा ही शामिल हो गया मैम।
1: जी जी,
0: आज तो बहुत इंतजार भी नहीं करना पड़ा मैम।
1: हाँ हाँ, क्योंकि अभी जस्ट जैसे शुरू किया आपका कॉल आया।
0: जी जी जी जी मैम,
1: और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: बस कुछ नहीं, आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम। वो तो काम तो अपना चल ही रहा मैम, मशीन चला रहे थे जेसीबी, बस हम देखे अभी 11 बज गए, बस ट्राई किए, फोन भी लग गया मैम।
1: अच्छा जी, चलिए तब बढ़िया है। बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा
0: जी? आज हमको सुनवा दीजिएगा जब दुनिया छोड़ के जाएंगे, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: और गाना चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्ति ट्रैवल.com पर विजिट करें।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: कहो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
3: रहो न जीजा, मैंने तैयार ना होके।

0: नहीं।
1: अच्छा तो चला।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।